आवा गौण मिटै गुरसबदी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जम की कान पार कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईए शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमै ओपत खपत सोबाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साज समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पारो तारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे।

नानक दरगह पावै मान। साच वखर तन पल्लै होए, आप तरह तारे पी सोए। सहज रत्ता बूझै पत होए, ताकी कीमत करै ना कोए। जै देखा तै रया समाए, नानक पार परै सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरियै भवजल संसारो। त्रै सत अंगल वाई कहियै, तिस कहो कम ने आधारो। बोलै खेलै असर होवै, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरै भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नमो मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, एत उत एको जाणै। चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। त्रै सत अंगल वाई अवदू, सुन सच आहारो। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै लख अपारो। त्रै गुण मेटै शब्द वसाए, ता मन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाणै, ता हर नाम लगै प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे लख लखाए। नानक तहते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथियले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवदू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवै अवदू, हम मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित असर रहिया, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल ना ग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जल बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रह, तव नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अगन निवारी, अप्यो पियो आत्म सुख तारी। सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक।

एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना, कहां बसै सो शब्द औदू, ता को चूकै मन का पवना, नदर करे ता सतगुर मेले, तानी कर वासा एहो मन पाए, आपै आप खाए ता निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै, गुरमुख हो मैं विचों खोवै, तव नानक सही समावै, एहो मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै, नाब पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोज तत लहै, सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्र पवन जोत सो शब्द लहै, खावै दुख भूख साचे की, साचे ही त्रिपतास रहै, अनहद बाणी गुरमुख जानी, विरलो को अर्थावै, नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबहू ना जावै, जा एहो हिरदा देह ना होती, तौ मन कैठै रहता, नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहिता, रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई, रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई, वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जाप साचा, नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा, हिरदा देह ना होती अवदू, तव मन सुन रह बैरागी, नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो, ता निज घर बसतो पवन अनुरागी, रूप ना रेखिया जात ना होती, तव अकलीन रहतो शब्द सोसार, गौन गगन जब तब ना होतो, त्रिपवन ज्योत आपे निरंकार, वर्ण पेख असरूप सो एको, एको शब्द विडाणी, साच बिना सूचा को नाही, नानक कथ कहानी, कित बिद जग उपजै पुरखा, कित कित दुख बिन सजाई, हम मैं विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरै दुख पाई, गुरमुख होवै सो ज्ञान तत विचारै, हम मैं शब्द जलाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, सच रह समाए, नामे नाम रहे बैरागी, साच रखिया उरतारे, नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै, देखो हृदय बिचारे, गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए, गुरमुख मन पीजै विरला बूजै कोए, गुरमुख निज कर वासा होए, गुरमुख जोगी जुगत पछाणै, गुरमुख नानक एको जाणै, बिन सतगुर सेवे जोग ना होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई, बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए, बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए, बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार, नानक बिन गुरमुआ जन्म हार, गुरमुख मन जीता हम मैं मार, गुरमुख साच रखिया अवतार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दर गै नाया वैहार, गुरमुख मेल मिलाए सो जाने, नानक गुरमुख शब्द पछाणै, शब्द का

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नजर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दसन दास। ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजियानो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजियानो, पाप पुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

सब कलिवख कट्टनहार। नाम जपे नामो वारा दे, तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन, जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है, सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाहे, किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथो हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा, सच्ची वड़ियाई है। जिसनो बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न, गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, बा बाणिया कहानियां। पुत सपुत करेन, जे सतगुर पावै सो मन लैन। सेई कर्म करेन, जाए पुछो सिमरत शास्त्र। ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन। सच्चै लाए सच लगे, सदा सच समालेन। नानक आए से प्रवान पए, जे सगले कुल तारेन। महला तीजा, गुरु जिन्ना का अंदला। सिख भी अंधे कर्म करेन, ओए पाणे चलन अपने। नित झूठो झूठ बोलेन, कूड़ कुसत कमावदे। पर निंदा सदा करेन, ओए आप डुबे पर निंदका। सगले कुल डोबेन, नानक जित ओए लाए तित लगे। ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा, जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लाया न, मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है, अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है, तिन वात सपीति। नानक नाम तिहाई है, सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखे खटे पाओ, पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए, आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए, फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए, जे को पुछे ता पढ़ सुनाए। तुर्क मंत्र कन

जोगी गिरही जटा विभूत, आगै पाछै रोवै पूत। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सरशाई पाई। नानक काल का एहो प्रवान, आपे आखण आपे जान। महला पहला, हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पड़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई, मुसलमान करे वड्याई। विण गुर पीरै को थाए न पाई, राहो दसाए उथै को जाए। करनी बाजाओ पिस न पाए, जोगी कह कर जुगत दसाई। तित कारण कर मुंद्रा पाई, मुंद्रा पाए फिर संसार। जिथै किथै सृजनहार, जेते जीते ते वाटाऊ। चीरी आई ढिल न काऊ, एथे जाणै सो जाय सियाणै। होर फकड़ हिंदू मुसलमान है सबना।

अहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान। बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत। कन पड़ाए क्या खाजे भुगत। आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम कर रह ता नानक आखे गुर को कह। छे वरतारे वरतै पूत ना संसारी ना ओ दूत। निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता। मानस देह गुर बचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला। नानक आखैरे मना सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलबा पवसन या किया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई। आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही। कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भक्ति रापै। सब मंतन हरिया होया अहंकार गवापै। सब किश हर का खेल है गुरमुख किसै बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रोवे पीखिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया सीता लखमण विछड़ गया। रोवे दैसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवे पांडव पय मजूर जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवे जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया। रोवे शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़। रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीखिया जाए। रोवे किरपन संचय तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जिन जाए औरी कर्म ना लेखे लाए। महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्या बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी। काया हंस तुर मेल करते लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है आपे दे वड्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा। नानक अंधा होए कै रतना परखण जाए। रतना सार ना जाणई आवै आप लखाए। महला दूजा।
रतना केरी गुथली रतनी खोली आए वखर तैवन जारिया दुहां रही समाए जिन गुण पल्ले नानका माणक वन जैसे रतना सार न जानई अंधे वत्तै लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखी जय बजरक पाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जय तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय सब मैं

करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। महला पहला, नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल। मनुआ अंधना चेतई पड़े अचिंता जाल। नानक चेत्या चेत है चिंता बद्दा जाए। नदर करे जे अपनी ता आपे ले मिलाए पौड़ी। से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता। गुरमुख सच्चा मन वसै सच सौदा कीता। सब किश कर ही माहे है वडभागी लीता। अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गावीता। आपे मेल मिलाया नू आपे दे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। वेल पंजाया कत मुनाया कट कुट कर खुंभ चढ़ाया। लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सुई तागा सीवै। इउं पतपाटी सिपती सीपै नानक जीवत जीवै। हुए पुराना कपड़ पाटै सुई तागा गंडै। माहो पख किहो चलै नाही कड़ी मोहत किश हंडै। सच पुराना होवै नाही सीता कदे ना पाटै। नानक साहेब सचो सच्चा तिचर जापी जापै। महला पहला, सच की काती सच सब सार। काड़ तो तिसकी अप्रयापार। सब दे सान रखाई लाए गुण की थेकै विच समाए। तिसदा कुठा होवै सेख लोहू लब निकथा वेख। होए हलाल लगे हक जाए नानक दर्दी दर समाए। महला पहला। कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार। गर्व ना की जय नानका मत सिर आवे पार। पौड़ी सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले। सच ते आयन से सचे जनहार खर्च तन पल्ले। भगत सोहन गुण गावंदे गुरमतिया चले। रतन विचार मन वसिया गुर कै शब्द भले। आपे मिल मिलाईंदा आपे दे वड़ियाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा। आसा अंदर सब को कोई निराशा होए। नानक जो मर जीव्या सहला आया सोए। महला तीजा। ना किसी आसा हथ है क्यों निराशा होए। क्या करे ए बपड़ी जा पुलाए सोए। पौड़ी त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन प्रभ दाता दातार। नहीं चले हो तन सास सासिया राधे निर्मल सोए जानो। अंतर जामी अगम रसना एक पन। रव रहे सरबत नानक बल जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला। सरवर हंस तुरे ही मेला खसमै एवै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती सो हंसा का खाना। बगला काग न रही सरवर जे होवै अत सियाणा। ओना रिजक न पयो उथै ओना होरो खाणा। सच कमाणै सचो पाई है कूड़ै कूड़ा माणा। नानक तिनको सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पै परवाणा। महला पहला। साहिब मेरा उजला जे को चित करे। नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे। नानक सोई सेवी है जित सेवे है दुख जाए। अवगुण वंजन गुण रवै मन सुख वसै आए। पौड़ी आपे आप वरतदा आप ताड़ी लाइयन। आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति आईयन। एक आपे उजड़ पायन एक भगती लायन। जिस आप बुझाए सो बुझ सी आपे नाए लाइयन। नानक नाम ती आई है सच्ची वड़े आई।

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजीर रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवा मेरे अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रब तो है कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरे मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़िया वर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय ना किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हौं तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंब नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भव जल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारे जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै
ਹਾਂ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दरगै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

पौड़ी वड़ियाई सच्चे नाम की हों जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उदारे एक घने दिन सरैन तेरा नाओ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे तरापी है रोग सोग दुख मन्ये जिस नाओ मन वसै तसै प्राप्त लाल जो गुरसबदी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उधार नहारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड़ गवाया रंग कुसुम बै भुली तो सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हों तुद बिन अड ना लहिंदी। महला पंजवां सस विरायण नानक जी ओ ससरा वादी जेठो पौ पौ लू है हब्बे पास पुणे दे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू उठा चित तिस दर्द निवारण जिस तू उठा चित तिस कदे ना हारण जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर प्रतारण जिसनो लाए सच ते सच संभालण जिस आया हथ निदान सो रहया पालण जिसनो इको रंग भगत सो जानण ओ सबना की रेण बिरही चारण सब तेरे चोज विडाण सब तेरा कारण। श्लोक महला पंजवां उस्तत निंदा नानक जी मैं हब मंजाई छोड़िया हब किज त्यागी हब्बे साख कूड़ावे डिठे तौ पल्ले तैंडे लागी। महला पंजवां फिरदी फिरदी नानक जीओ हों फावी थी बौद्ध सावर पंदा ताहों सुख सुखाली सुती।

मां बेदियाले जैसे कनक कला चित मांडियाले रहाओ। आनी ले कुंभ भराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बिनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियाले। मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छियाले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियाले। कहत नाम दे सुनो तिलोचन बालक पालन पौडियाले अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखियाले। वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित ना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मैं अनहद वेद मजाओ गो। बैरागी रामे गावो गो सबदा तीता नह दराता या कुल कह कर जाओ गो रहाओ। एड़ा पिंगला और सुख मना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दो समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल मैं पैसो जी जंत ना सतावो गो। 68 तीर्थ गुरु दिखाए कठी पीतर नाओगो। पंच सहाई जन की सोबा पलो पलो ना कहावो गो। नामा कह चित हर स्यों राता सुन समाध।

माय ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय, हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जाओ गोदावर जाइये, कुंभ जाओ केदार नाइये, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करै, तन जाओ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सर तऊ न पूजै। मने न की जय रोस, जमै ना दी जय दोस, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत्रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपाओ पाओ न दर्श। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जाओ पारस नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे। रहाओ हम बाडो कब कुलीन, हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहा निरंजन रमैया होए। रहाओ देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदा नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेव। दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहे सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ठ करै। चौ मुख दीवा जो द्वार, पलू अंत मूल विचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै। मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर शंख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान,
ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ।

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध्य सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावै, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर मैं, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवै, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जप्यो गुरबचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगम अगोचर स्वामी, जन जप मिल सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनवे कहन कहन कहन हर गर जय, मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के, बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक, हम अब आए प्रभ शरणगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत

आओ साधु तूर कर नित मज्जन सब किल विख पाप गवायण पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायण जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायण दोए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दा दसायण नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलो सतगुर दीनो दान रहाओ सुखदाता दुख पंजन हारा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख वखाना प्रभयंत्र जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुरबान नट महला पंजवा हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीना ना दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण तन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल नट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मंतन जीत रहाओ कोई विरला अपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर पाजो जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होहे पुनीत नानक दास बल बल कीत नट अष्टपदिया महला चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मंतन नाम आधारे खिन पल रह न सको बिन सेवा मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ हर हर हर हर हर मन त्यावो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर गुर के शब्द सवारे मधुसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकर अगम अपारे एक बिनो बेनती करो गुर आगे मैं साधु चरण पखारे सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो प्रभ एको पुरख निरारे सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उरतारे हर हर कथा बनियत मीठी ज्यों गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे अत फीके लोभ बेकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अनरस साध बिसारे गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे धर्म राय जम नेड़ ना आवे मेरे ठाकुर के जन प्यारे सास सास सास है जेते मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बेकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी मोको हरजन मिल प्यारे नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे नट महला चौथा राम हम पाथर निर्गुणियारे कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पहन शब्द गुर तारे रहाओ सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा मैला गर्म लगारे ना मैं सुरत वजी है दय दसो हर मुस्की मुसक गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनीके बचन समारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे बबेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिये संको तारे सतगुर मिलिये परम पद पाया हो सतगुर कै बलिहारे पाखंड पाखंड कर कर परमे लोभ पाखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे दिन सियाल जाल संभाले बिख माया के बिस्थारे आई रहन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारे साग तनार सब पुख पुखाने दर ठांडे जम जंदारे मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारे जगन्नाथ सब जंतर उपाए नक खीनी सब नथ हारे
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਵ ਚੱਲੀਐ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਮਿਲ ਕਰਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਬਾ ਗਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਜਾ ਕਉ, ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬੇਦਾਰੇ। ਮਾਨੁਖ ਕਥੈ ਕਥ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਤਬ ਲਗ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਮਾਰੇ। ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਰ ਆਗ ਲਗਾਨੀ, ਕੱਢ ਕੂਪ ਕੱਢੈ ਪਨਿਹਾਰੇ, ਸਾਗਰ ਸਿਉਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਡਸੀਐ, ਤਜ ਸਾਕਤ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ। ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਰਸ ਗਾਵੈ

क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यो कुंचर तंदुऐ पकड़ चलायो, कर उपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत तत नीके, मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा

सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खावारे। ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लू की जारे। प्रभ को जन अंतर रिद लोचै प्रभ जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भक्त दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे। अपने आपे आप प्रभ ठाकर प्रभ आपे सृष्ट सवारे जन नानके आपे आप।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख सा जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंचभूत सबल है देही, गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उनवे कहन कन हारे। साकत गौ अमृत भौ सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै विख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले पर उपकारे। संत संत मिले मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कह दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग ले मारे। राख राख राख प्र मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक राग माली गौड़ा महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सह पंगुर प्रसाद। अनक जतन कर रहे, हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध, आदेश हर प्रभराया रहाओ। काम क्रोध

लो मोहो निर्चगर ते चगर आया, हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया। शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख ली उतराया। हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया। हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उर तारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता, सत संगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ। वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता। तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता। पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता। ललाट लिखे पाया गुर साधु, गुर बचनी मंत्र राता। हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता। राम रसायन

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला, एहो तन सरबरया भरपूर, मन फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू दे

जप हर हर नाम छिड़ावै जियो रहाओ, सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ, हर सत सत सदा हर सत, हर सत मेरा मन भावै जियो, नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता, जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लै जावै जियो, माया मोह बिखम है भारी, क्यों तरियै दुत्तर संसारी, सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंघावै जियो, तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करै सोई प्रभ होई, जन नानक गुण गावै बेचारा, हर पावै हर थाए पावै जियो, मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किल विख काटै हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै, गुर प्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ, निरपौ निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम, दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो, जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया, जे उसका बुरा कहे कोई पापी, तिस जम कंकर खाई जियो, सब मैं एक निरंजन करता, सब कर कर वेखै अपनी चलता, जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप छिड़ाई जियो, हवन दिन नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे, दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो, मारू महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, डर पै तरत आकाश नखियत्रा, सिर ऊपर अमर करारा, पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा, एका निरपौ बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला, जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै, से साधक डर मोया, लख चौरासी मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया, राजस सातक तामस डर पै, केते रूपयो पाया, शल बपरिय कौला डर पै, अत डर पै धर्म राया, सगर समग्री डर ब्यापी, बिन डर करने हारा, कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोह दरबारा, मारू महला पंजवा, पांच बरख को अनाथ त्रू बारक, हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो, जम कंकर मार बेदारे, मेरे ठाकर केते अगंत उधारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण, परयो सरन द्वारे रहाओ, बालमीक सुपचारो तरयो, बद्धक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराध्यो, गदपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलाद, हर नाक्ष नखै बिदारे, बिदर दासी सुत भयो पुनीता, सगले को लियो जारे, कवन पराध बतावो अपने, मिथ्या मोह मगनारे, आयो साम नानक ओट हर की, लीजै पुजा पसारे, मारू महला पंजवा, वेतन वेत प्रमयो बहु भांति, अनक जतन करताए, जो जो कर्म किए हो मैं, ते पै आ जाए, अवर देन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजै प्रभ जियो, जां दिन हर जस गाए रहाओ, पुत्र कलत्र गृह देख पसारा, इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पै उदमाते, हर हर कबो न गाए, एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ, मांगन कौ दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पै एक, महा आनंद सुख पाए, मारू महला पंजवा,
कवन थान तीरियो है नामा कवन बस्त अहंकारा कवन चिहन सुन ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा सुनो रे तू कौन कहां ते आयो एती ना जानो केती एक मुद्दत चलते खबर ना पायो रहाओ सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते पंच तत् मिल पयो संजोगा इन मैं कमन दुराते जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हम मैं पाई जन मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई बरन चिहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा पंत नानक जब खेल उजारै तब एक है एक अंकारा मारू महला पंजवा मान मोहवर लोभ विकारा बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे वा लाद वखर लै चालेओ सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहेब सेवयो अपना चलते राख्यो चीत रहाओ जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरेओ सहजा नंद रखियो गृह पीतर उठ वाहूं कौ दौरेओ आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सो घर खनी जानेओ जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथा ले मान्यो पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सवरे हल्त पलाता तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता मारू महला पंजवा खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए बिश्रामा मिट गई सगली ताई अब मोहे जीवन पदवी पाई चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ काम क्रोध लोभ निवारे निवरे सगल बैराई सद हजूर हाजर है नाजर कतै न पयो दुराई सुख शीतल सरदा सा पूरी होए संत सहाई पावन पतत किए खिन पीतर मैं मां कथन ना जाई निरपौ पय सगल पै खोए गोबिंद चरण उटाई नानक जस गावै ठाकर का रहन दिन सिलिवलाई मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक तिसको कबो न गाव सिरे छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ ओआ कौ फिर ताव सिरे अपने प्रभ कौ क्यों ना समार सरे बैरी संग रंग रस रचिया तिस्यों जिया राजार सरे रहाओ।

साध रूप अपना तन तारिया, महा अगंते आपो बारिया, जप तप संजम इस्ते किश नाही, आदि अंत प्रभ अगमा गाही। नाम देहे मांगे दास तेरा, हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा। मारू महला पंजवा, कत कौ डहकाव लोगा, मोहन दीन कृपाई ऐसी जान पाई। सरण सूरो गुरदाता, राखे आप वडाई रहाओ, भगता का आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई। अपने कौ कृपा करियो एक नाम त्याई, नानक दीन नाम मांगे द्वितीया परम चुकाई। मारू महला पंजवा, मेरा ठाकर अत पारा, मोहे सेवक बेचारा। मोहन लाल मेरा प्रीत मन प्राणा, मोको देहो दाना रहाओ। सगले मैं देखे जोई, बीजो अवर ना कोई, जियन प्रतपाल समाहे है हुसी आहे। दया मोहे की जय देवा, नानक लागो सेवा। मारू महला पंजवा, पत ते उदाहरण तारण, बल बल बले बल जाइए, ऐसा कोई पेटे संत, जित हर हरे हर त्याइए। मोको कोई ना जानत, कहियत दास तुम्हारा, एहा ओटा धारा रहाओ। सर्ब तारण प्रतपारण, एक बिना दीना, तुमरी बिद तुम ही जानो, तुम जल हमीना। पूर्ण बिस्थिरन स्वामी, आहे आयो पाछ सगलो पूमंडल खंडल। प्रभ तुम ही अच्छ, अटाला खयो देवा, मोहन अलख अपारा। दान पावो संता संग, नानक रेण दा सारा। मारू महला पंजवा, त्रिपत अगाए संता, गुर जाने जनमंता, ता की किश कहण ना जाई, जा को नाम बड़ाई। लाल अमोला लालो, अगया तो लाना मो रहाओ, अवगत स्यों मान्या मान।

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथै अगन पखै पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथै खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा मैं राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसै गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर उपर तब सोब तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूटत नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

पेयड़ प्रसमला साहरड़ करवास सुख संबंध सोहागणी प्रपाया गुणतास लेफ निहाली पटकी कापड़ अंग बनाए प्रमुती डोहागणी तन दुखी रहन विहाए किती चखो छाडड़े किती विस करे ओ पिर बिन जोबन बाद गयम वाडी चूरे दी चूरे ओ सच्चे संदा सदड़ा सुनिया गुर विचार सच्चे सच्चा बहना नदरी नदर प्यार ज्ञानी अंजन सच का देख देखण हार गुरमुख बूझै जानिए होमै गर्भ निवार तौ पावन तौ जेहिया मूं जेहिया कितिया नानक नाहो ना विछड़ै तन सच्चै रतड़िया मारू महला पहला ना पहना पर जाइया ना से ससड़िया सच्चा साग ना टुटई गुरमेले सैया बलिहारी गुरे अपने सद बलिहारे जाओ गुर बिन एता भव थकी गुर पिर मेलम दितम मिलाए रहाओ फूफी नानी मासिया देर जे ठंडिया आवन वंजन ना रहन पूर पहे परे पैया मामे तै मामानिया पायर बाप ना माओ साथ लड़े तिन नठिया पीड़ कणी दरियाओ सचो रंग रंगा बलो सखी हमारो कंत सच विछोड़ा नाथिया सो सौ रंग रवंत सबे रुती चंगिया जे सचे स्यो ने हो सा तन कंत पछाणिया सुख सुती निसडे हो पतन कूके पातनी वन्यो त्रुक विलाड़ पार पवंदड़े डिठ मैं सतगुर बोथ चाड़ हिक नी लद्या हिक लद गए हिक पारे परनाल जिन्नी सच वणजिया से सचे प्रवनाल ना हम चंगे आखिया

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंधन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना साकै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मछकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पानी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपो ताड़ी लाई है, खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल विकाल पए देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

पेशा जे गुण प्रगा संग जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है जिस करना सो कर कर वेख है कोई न मिटे साचे लिख है आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है पंच चोर चंचल चित चल है पार कर जो है कर नहीं पल है काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन ऐसो लूझै जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपो बाल सिखाई है आपे सुरग मछ पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है बेदक ते भी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता सगले सैल्यो पाए समाए अलख ना लखना जाई है कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे सुर नर नाथ साहेब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे बिन नावे मैं अवर ना दिसे नामो गत मित पाई है गंगा जमुना केल केदारा कांसी कांति पुरी दुवारा गंगा सागर बेणी संगम आठ साठ अंक समाई है आपे सिद्ध साधक विचारी आपे राजन पंचांकारी तख्त बह अदली प्रव आपे परम भेद पौ जाई है आपे काजी आपे मुल्ला आप भुल ना कबहू भुला आपे मेहर दया पदाता ना किसे को बैराई है जिस बख्से तिस दे वडियाई सबसे दाता तिल ना तुमाई भरपुर तार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है क्या साला ही अगमिया पार साचे सृजन हार मुरार जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेलाई है ब्रह्मा विश्रम हेस द्वार है उबे सेवै लख्या पार है होर केती दर दिसे बिल लांदी मैं गणतना आवे काई है साची कीर्त साची बाणी होर ना दिसे बेद पुराणी पूंजी साच सच्चे गुण गावां मैं तर होर ना काई है जुग जुग साचा है पी होसी कौन न मुआ कौन न मरसी नानक नीच कह बेनंती दर देखो लिवलाई है मारू महला पहला दूजी दुरमत अन्नी बोली काम क्रोध की कच्ची चोली कारवार सहज न जाने शोहर बिन पर नींद न पाई है अंतर अगन जलाए पड़क हारे मनमुख तके कुंडा चारे बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई है काम क्रोध अहंकार निवारे तस्कर पंच शब्द संगारे ज्ञान खड़गले मन स्यों लूजै मनसा मन समाई है मां की रकत पिता बिंद तारा मूर्त सूरत कर पारा जोत दात जेती सब तेरी तू करता सब ठाई है तुझ ही किया जमन मरना गुरते समझ पड़ी क्या डरना तू दयाल दया कर देख दुख दर्द शरीर हो जाई है निज कर बैस रहे पौ खाया तावत राखे ठाक रहाया कमल विगास हरे सर सुबर आत्म राम सिखाई है मरण लिखाए मंडल में आए क्यों रही है चलना परथाए सच्चा अमर सच्चे अमरापुर सो सच मिले वडाई है आपो पाया जगत सबाया जिन सिर आत तंदे लाया सच्चे ऊपर अवरना दिसे साचे कीमत पाई है एथे गोयलड़ा दिन चारे खेल तमाशा तंदूकारे बाजी खेल गए बाजी गार जो निस सुपने पखलाई है तिन कौ तख्त मिली वड्याई निरपो मन वस्या लिवलाई खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी त्रिपवन ताड़ी लाई है साची नगरी तख्त सचावा गुरमुख साच मिलै सुख पावा साचे साचे तख्त वडाई हो मैं गणत गवाई है गणत गणीय सह साजी है क्यों सुख पावे दूवे तीय निर्मल एक निरंजन दाता गुरपुरे ते पत पाई है
ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਿਰਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਸਾਚਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਕਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮੰਤਰ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ, ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਸਾਚੈ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਭਉ ਨਾ ਭਰਾਤੀ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਰੋਤ ਰਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਹੈ, ਰਖ ਰਖ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪਉ ਤਰਨਾ, ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇਹੇ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਤੁਝ ਹੀ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਨਿਜ ਕਰ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅੱਜ ਉਗਾਦੀ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰ ਹੈ, ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਖਸਮ ਹਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਜੋ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਾਚੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗ ਤੰਦੂਕਾਰ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਚੈ ਤਖਤ ਵਡਾਈ ਹੈ, ਸਤ ਜੁਗ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ, ਸਤ ਸਤ ਵਰਤੈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਪਰਖ ਹੈ, ਸਾਚੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੂਰਾ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਸਾਚ ਨਿਵਾਸਾ, ਮਾਨੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਹੈ, ਸਤ ਜੁਗ ਸਾਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇਕ ਦੁਬਦਾ ਸੂਕੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ, ਬਾਂਦੇ ਆਵੈ ਬਾਂਦੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਜਨਾ ਕਾਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੁਆਪਰੇ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ, ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਅਹਿਨਿਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਹੱਠ ਨਿਗਰੈ ਅਪਤੀ।

ना सोच संजम तुलसी माला, गोपी का न गऊ ग्वाला, तंत मंत्र पाखंड ना कोई, ना को वंश वजाएदा। कर्म धर्म नहीं माया माखी, जात चर्म नहीं दिसै आखी, ममता जाल काल नहीं माथै, ना को कसै त्याएदा। निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो, ना तद गोरख ना माशिंदो, ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत, ना को गणत गणाएदा। वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री, देव ना देहरा गौ गायत्री, होम जग नहीं तीर्थ नावन, ना को पूजा लाएदा। ना को मुल्ला ना को काजी, ना को सेख मसाय कहाजी, रैयत राव ना हो मैं दुनिया, ना को कहन कहाएदा। भाव ना भगती ना शिव सकती, साजन मीत बिंद नहीं रखती, आपे साहो आपे वनजारा, साचे एहो पाएदा। वेदक तेवना सिमरथ शास्त्र, पाठ पुराण उदय नहीं आस्त, कहिता बगता आपा गोचर, आपे लख लखाएदा। जात सपाणा ता जगतो पाया, बाज कला आडान रहाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह वधाएदा। विरले कहो गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सवाया। खंड ब्रह्मांड पताल आरंभे, गुप्तो प्रगटी आएदा। ता का अंत न जाने कोई, पूरे गुरते सोजी होई। नानक साच रते बिस्मादी, बिस्म पए गुण गाएदा। मारू महला पहला, आपे आपो पाए निराला, साचा थान की ओ दयाला। पौन पानी अग्नि का बंधन, काया कोट रचाएदा। नौकर थापे थापन हार है, दसवें वासा लख्या पार है। सायर सप्त भरे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएदा। राव सस दीपक ज्योत सबाई, आपे कर वेखै वडियाई। ज्योत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे सोभा पाएदा। गढ़ में हाट पटन वापारा, पूरे तोल तोले वनजारा। आपे रतन वसाहे लेवै, आपे कीमत पाएदा। कीमत पाई पावन हार है, वे प्रवाह पूरे भंडार है। सर्ब कलाले आपे रहा, गुरमुख सह बुझाएदा। नदर करे पूरा गुर पेट, जम जंदार न मारे फेट। ज्यो जल अंतर कमल बिगासी, आपे बिकसते आएदा। आपे वरख है अमृत तारा, रतन जवेहर लालिया पारा। सतगुर मिले ता पूरा पाई है, प्रेम पदार्थ पाएदा। प्रेम पदार्थ लह

जो आया सो सब को जासी, दूजे पाए बाधा झम फांसी। सतगुर राखे से जन उबरे, साचे साच समाई है। आपे करता कर कर वेखे, जिसनो नदर करे सोई जन लेख। गुरमुख ज्ञान ते सबके सूजे, अज्ञानी अंध कमाई है। मनमुख सहसा बूझ ना पाई, मर मर जम जन्म गवाई। गुरमुख नाम रते सुख पाया, सहजे साज समाई है। तंदे तावत मन भया मनूरा, फिर होवे कंचन पेट है गुरपूरा। आपे बख्श लए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुरमत झूठी बुरी बुरियार, औगण यारी औगण यार। कच्ची मत फीका मुख बोले, दुरमत नाम ना पाई है। औगण यारी कंत ना पावे, मन की झूठी झूठ कमावे। पिरका सौ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ ना पाई है। दुरमत खोटी खोट कमावे, सिंगार करे फिर खसम ना पावे। गुणवंती सदा पिर रावे, सतगुर मेल मिलाई है। आपे हुक्म करे सब वेखै, एक ना बख्श लए तुर लेखै। आन दिन नाम रते सच पाया, आपे मेल मिलाई है। हम मैं तात मोह रस लाई, गुरमुख लिव साची सहज समाई। आपे मेले आपे कर वेखै, बिन सतगुर बूझ ना पाई है। एक शब्द विचार हो सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपहागे। आपे करे कराए आपे, होर करना किछु ना जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उर तारे। सतगुर सेवा ते सुख पाया, हर कै नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी। बहुते पेख करे न पाए, बिन सतगुर सुख ना पाई है। किसनो कहिए जा आप कराए, जित पावे तितराहे चलाए। आपे मेहरवान सुखदाता, जो पावे तवे चलाई है। आपे करता आपे भुगता, आपे संजमे आपे जुगता। आपे निर्मल मेहरवान मधसूदन, जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है। सेवड पागी जिनी एको जाता, घट घट वस रहा जग जीवन दाता। एक थै गुप्त प्रगट है आपे, गुरमुख भ्रम पौ जाई है। गुरमुख हर जियो एको जाता, अंतर नाम शब्द पछाता। जिस तू देहे सोई जन पाए, नानक नाम वडाई है। मारू महला तीजा, सच सा लाही गैर गंभीर है। सब जग है तिस ही कै चीर है, सब कट भोग वै सदा दिन राती। आपे सुख निवासी है, सच्चा साहिब सच्ची नाई। गुर प्रसादी मन वसाई, आपे आए वसया कट अंतर। टूटी जमकी फासी है, किस सेवी तै किसा लाही। सतगुर सेवी सब सलाही, सच्चे शब्द सदा मति उत्तम। अंतर कमल प्रगासी है, देही काची कागद मिकदारा। बूंद पवै बिनसै, टहत ना लागे बारा। कंचन काया गुरमुख बूझै, जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम भोजन सच आधारा। सदा तृप्त पवित्र है पावन, जित घट हर नाम निवासी है। हाँ तिन बलिहारी जो साचै लागे, हर गुण गावै अंदर जागे। साचा सूख सदा तिन अंतर, रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर ना पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। पूरे गुर सब सच दिखाया, सच्चै नाम निवासी है। परम परम जोनी फिर फिर आया, आ पूला जा खसम पुलाया। हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे, चीने शब्द अबनासी है। काम क्रोध परे हम अपराधी, क्या मोहले बोले ना हम गुणना सेवा सादी। डुबदे पाथर मेल लहो तुम, आपे साचना।

आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम निवासी है। एहो तम धरती शब्द बीजया पारा हर साचे सेती वण जवा पारा सच धन जमया तोट ना आवै अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय आपे बख्श लह नाम दी जय गुरमुख होवै सो पत पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई गुर प्रसादी बूझै कोई गुरमुख होवै सो तन पाए सदी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई माया मोहे सो दना काई मनमुख अंधे किशु ना सूझै गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हों मैं माया सूते अपना कर ना संभालै अंत विगूते पर निंदा करै बो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा दूजे लागा सब जग काचा गुरमती सदा सच सालाही साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता आपे लाए लय जग जीवन दाता आपे बख्शे दे वड़े आई।

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतना, आपे हीरा रतना मोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरन तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरत संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यों चेतना लागे, दूजे पाए घणा दुखिया गै, मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का एक

अंजन गुण गावै रंगराता, गुण कै गुणी समाएंदा। एहो शरीर सब मूल है माया, दूजै पाए परम भुलाया। हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा। जे सतगुर सेवे सो प्रमाण, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान। हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा। बिन भागा गुर सेविया ना जाए, मनमुख भूले मोए बिल लाए। जिन को नजर होवै गुर केरी, हर जियो आ मिलाएंदा। काया कोट पक्के हट नाले, गुरमुख लेवै वस्त संभाले। हर का नाम ते आए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा। आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता। नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा। मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया। माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता। सुन साचा मन वसाएंदा। माया माई त्रैगुण पर सूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नु फरमाया। वरे महावार स्थिति कर, इस जग में सोजी पाएंदा। गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार। गुरबाणी वर्ती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा। वेद पढ़े अंदर नवास संभाले, नाम ना चेतै बद्दा जमकाले। दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रैगुण परम भुलाएंदा। गुरमुख एक सस्यों लिव लाए, त्रिबद मनसा मन समाए। साचे शब्द सदा है मुक्ता, माया मोह चुकाएंदा। जो तुर राते से हुण राते, गुर प्रसादी सहजे माते। सतगुर सेव सदा प्रपा।

अकुल नहीं जाती। पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना। जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता। अकिरत घणै कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया। तिस स्यों प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे। हाथ मारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसै जनावना। जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया। नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना। आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलहि कीने। ता की कीमत कहण ना जाई, जत का तो ही समावना। सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता। बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बधै कटे ना कटाए। सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना। अंधकूप ते सही काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना। तेरी कीमत कहण ना जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई। भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पहला, विण गाहक गुण वेची है, तौ गुण सह गो जाए। गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख विकाए। गुण ते गुण मिल पाई है, जे सतगुर माहे समाए। मोल अमोल ना पाई है, वणजना लीजै हाट। नानक पूरा तोल है, कबो ना होवै घाट। महला चौथा, नाम विहुणे परम सह, आवै जावै नीत। एक बंध एक ढीलिया, एक सुखी हर प्रीत। नानक सच्चा मन लै, सच करनी सच रीत। पौड़ी, गुरते ज्ञान पाया, अत खड़ग करारा। दूजा परम गढ़ कटिया, मोह लोभ हंकारा। हर का नाम मन वसिया, गुर शब्द विचारा। सच संजम मति उत्मा, हर लगा प्यारा। सब सचो सच वर्तदा, सच सिरजनहारा। श्लोक महला तीजा, केदारा रागा विच जानिया पाई, सबदे करे प्यार। सत संगत स्यों मिल दो रहै, सच्चे तरे प्यार। विचो मल कटे अपनी, कुला का करे उधार। गुणा की राह संग्रह, अवगुण कडे विडार। नानक मिलिया सो जानिए, गुरु ना छोड़े अपना। दूजे ना तरे प्यार। महला चौथा, सागर देखो डर मराओ, पै तेरे डर ना है। गुर कै शब्द संतोखिया, नानक बिगसा ना है। महला चौथा, चढ़ बोए थे चाल सौ, सागर लेरी दे। ठागना सच्चे बोए थे, जे गुर तीरक दे। तित दर जाए उतारिया, गुर दिसै सावधान। नानक नदरी पाई है, दरगह चल मान। पौड़ी, नेह कंटक राज पुंच तू, गुरमुख सच कमाई। सच्चा तख्त बैठा न्याओ कर, सतसंगत मेल मिलाई। सच्चा उपदेश हर जापना, हर स्यो बनियाई। ऐथै सुखा ऐथै सुखदाता, मन वसै अंत होए सखाई। हर स्यो प्रीत उपजी, गुर सोजी पाई।

मान्या जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण काहे की जित है मन पावन जब जब आए केस ते पकड़े तै हर को नाम छावन रहाओ काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन कहे कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन देही गावा जियो तर महतो बसै पंच किरसाना नैनू नगटू श्रवनु रसपत इंद्री कया नमाना बाबा अब ना बसो एह गाओ करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ रहाओ धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी पंच किरसान वा पा गए लै बांधे ओ जियो दरबारी कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनपव किने ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनपव होए वना हम्बे सहो हदूर देखे ता पव पवे बैरागी अड़े हुक्मे बूझे ता निरपव होए वना हम्बे हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े पाखंड रता सब लोक वना हम्बे तृष्णा पासना छोड़ई बैरागी अड़े ममता जालिया पिंड वना हम्बे चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े जे मन मृतक होए वना हम्बे सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े जे लोचे सब कोए वना हम्बे कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े सहजे पावे सोए वना हम्बे कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े मोको पौजल पार उतार वना हम्बे राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे पावे रहाओ हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी कबीर को ठाकर अंत बिनोदी जातना काहू की मानी सलोक कबीर गगन मामा बाजियो परयो निशा न काओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड खेत कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार मुक्त चार सिद्ध मिलके दूल्हे प्रभ की शरण परयो मुक्त पयो चौहू जुग जान्यो जस कीर्त माथे शतर तरयो राजा राम जबत को ना तरयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगता को नाम परयो रहाओ शंख चक्र माला तिलक बराइत देख प्रताप जम डरयो निरपो पय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिरयो अमरीको दियो अपै पद राज पीखन अद करयो नौनिध ठाकर दई सुदामै त्रु अटल अजहू न टरयो भगत हेत मारियो हरनाक्ष नर सिंह रूप होए देह धरयो नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो दीन बिसारियो रे दीवाने दीन बिसारियो रे पेट भरे ओ पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म है हारे ओ रहाओ साध संगत कबहू नहीं कीनी रचियो तंदे झूठ स्वान सूकर बाय सजे वह पटकत चाल्यो ऊठ आपस को

कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियारा लोभ करत है आजकाल उठ जाहेगा रहाओ। लालच लागे जन्म गवाया माया परम पुलाहेगा, तन जोबन का गर्भ ना कीजै कागद ज्यों गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटकै ता दिन किश ना बसाहेगा, सिमरन भजन

कहत कबीर सुनो रे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे शदर तरे रहाओ। जा की शोत जगत को लागे, ता पर तू ही टरे। नीचे उच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबै सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मानो, काम तेन बस जा के रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नव निद कर तलता कै। हर हर हरना जप सरसना, अवर सब छाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण बेद बिद, चौतीस अक्षर माही। ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सर नाही। सहज समाद उपाद रहत होए, बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास उदास दास मत, जन मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारह माहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा प्रभ कमाया, सिर सिर सुख सहमा देह सो तू भला। हर रचना तेरी क्या गत मेरी, हर बिन घड़ी ना जीवा। प्रे बाज दुहेली कोय ना भेली, गुरमुखे अमृत पीवा। रचना राच रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुने आत्म रामा। बाबीहा प्रयो बोले कोकल बाणिया, सा तन सबरस चोले अंक समाणिया। हर अंक समाणी जा प्रभाणी, सा सुहागण नारे। नाव कर थाप महल कर ऊंचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस्बा सर रंग रावै। नानक प्रयो प्रयो चवै बबीहा, कोकल शब्द सुहावै। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने, मंतन रवत रवन्ने घड़ी ना बिसरै। क्यों घड़ी बिसारी हों बलिहारी, हों जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हों किसके राह, हर बिन रहण ना जाए। ओट गही हर चरण निवासे, पय पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावै, गुर शब्दी मन तीरा। बरसै अमृत तार बूंद सुहावनी, साजन मिले सहि सुभाए। हर स्यों प्रीत बनी, हर मंदिर आवै जां प्रभावै। तन उबी गुण सारी, घर घर कंतरवै सुहागण। हों क्यों कंत विसारी, उनम कन छाए। बरस सुभाए, मंतन प्रेम सुखावै। नानक वरसै अमृत बाणी, कर कृपा कर आवै। चेत बसंत पला पवर सुहावड़े, बन फूले मंज बार। मैं फिर कर बाहुड़ै, फिर कर नहीं आवै। तन क्यों सुख पावै, बिरह बिरो तन छीजै। कोकले अंब सुहावी बोलै, क्यों दुख अंक सहीजै। पवर पवंता फूली डाली, क्यों जीवा मर माए। नानक चेत सहज सुख पावै, जे हर वार घर तन पाए। वैसाख पला साखा वेस करे, तन देखै हर द्वार आवो दया करे। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुद बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे दुद पावा, देख दिखावै ढोलो। दूर ना जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वह साखी प्रभ पावै, सुरत शब्द मन माना।

मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रबलहो रे रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमहो रे। अंतर काय अभिमान जोर तू किश किश किश जानता, एहो दूर करो अपन गहोरे। जन नानक कहो हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। केदारा महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई संत संग जागी प्रेरंग देखै, जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बेडानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देखत मोदर रहस मन उपजियो, नानक प्रे अमृत बानी। केदारा महला पंजवां कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन बिना सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी, एक मन अनाथ नाथ राघो कृपाल रहाओ। अनक जतन गमन करो, खट कर्म जुगत ध्यान धरो। उपाव सगल कर हारो, नय नय हुटै बिकराल। शरण बंदन करना पते, पव हरण हर हर हर हरे। एक तू ही दीन दयाल, प्रभ चरण नानक आसरो। उदरे परम मोह सागर, लग संतना पग पाल। केदारा महला पंजवां कर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सरनी आयो नाथ निदान, नाम प्रीत लागी मन पीतर। मांगन कौ हरदान रहाओ, सुखदाई पूर्ण परमेश्वर। कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोबिंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक कहो हर कै रंग रंगो। चरण कमल संग ध्यान, केदारा महला पंजवां। हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो। तुम देवो अपनो नाओ रहाओ, करो सेवा सतपुरख प्यारे। जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कमन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रतपालै सगल समालै, सगलियां तेरी छाओ। नानक के प्रपुरख विदाते, घट घट तुझे दिखाओ। केदारा महला पंजवां, प्रे की प्रीत प्यारी। मगर मनै मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी। खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी। मान अवमान मोह तज नानक, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवां, हर हर हर गुण गावो। करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ। काड लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो। भ्रम पौ मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा, अहं बुद्ध तजावो। अपनी भगत देह दया लावड़, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवां, हर बिन जन्म अकार्थ जात। तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ। धन जोबन संपै सुख भुगवै, संग ना निभत मात। मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात। कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवां,
ਹਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਚਾਲਸ ਸਾਥ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਕਰਨਾ ਪਤ ਸਵਾਮੀ, ਅਨਾਥਾਂ ਕੇ ਨਾਥ ਰਹਾਓ। ਸੁਤ ਸੰਪਤ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਭੁਗਵਤ, ਨਹਿ ਨਿਬਹਤ ਜਮ ਕੈ ਪਾਥ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਧਰ ਸਾਗਰ ਕੇ ਖਾਤ, ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਥਿਆ ਗੋਚਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਾਥ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਤੂਰ ਜਨ ਬਾਂਸ਼ਤ, ਮਿਲੈ ਲਿਖਤ ਧੁਰ ਮਾਥ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੇ ਮਨ ਤੇ ਹਰੀ, ਅਬ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਂਪ੍ਰਬਲ ਭਈ, ਆਣ ਬਿਖੈ ਜਰੀ ਰਹਾਓ। ਬੂੰਦ ਕਹਾਂ ਤਿਆਗ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ, ਰਹਿਤ ਨਾ ਕਰੀ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਉਚਾਰ ਰਸਨਾ, ਟੇਵ ਇਹ ਪਰੀ ਮਹਾਨਾਦ ਕੁਰੰਕ ਮੋਹਿਓ, ਬਿਦ ਤੀਖਣ ਸਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸਾਲ ਨਾਨਕ, ਗਾਠ ਬਾਂਧ ਧਰੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮੈਂ ਖੋਰ, ਭਰਮ ਭੀਤ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕਰ, ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਆਪਣੀ ਓਰ ਰਹਾਓ। ਅਦਕ ਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਚਾਰੋ ਤੋਹਰ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਇਥ, ਉਧਰ ਤੇ ਲੈ ਮੋਰ। ਗਰਭ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਜਿਨੈ ਧਾਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਬਿਖੈ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਹਰ ਸਕਤ ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ, ਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਹੋਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਖਾਨ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਭੈ ਕਲਮਲਹਾਨ ਰਹਾਓ। ਤਿਆਗ ਚਲਨਾ ਸਗਲ ਸੰਪਤ, ਕਾਲ ਸਿਰ ਪਰਜਾਨ, ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ, ਝੂਠ ਸਰ ਪਰਮਾਨ, ਸਤ ਪੁਰਖਿਆ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਹਿਰਦੈ ਤਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲਾਭ ਨਾਨਕ, ਬਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਕਲ ਕਲੇਸ ਨਾ ਕਛ ਵਿਆਪੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਓ। ਕਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਪ ਰਾਖਿਓ, ਨੈ ਉਪਜਤੋ ਬੇਕਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਦਹਿਤ ਨੈ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਜਸ, ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨਾ ਕੀ ਸ਼ਾਰ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੋਤ, ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਵਿਸਾਰ ਜੀਵੈ, ਤਿਹ ਕਤ ਜੀਵਨ ਹੋਤ ਰਹਾਓ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਅਨੇਕ ਬਿੰਜਨ, ਜੈਸੇ ਭਾਰ ਬਹਕ ਖੋਤ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਮਹਾਸ਼੍ਰਮ ਪਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਬਿਰਖ ਜੰਤੀ ਜੋਤ, ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਅਨ ਲਾਗੇ, ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ, ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਹਰ ਰੱਖੋ ਕੰਠ ਪਰੋਤ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤੈ ਧੂਰ ਲੇ ਮੁਖ ਮਲੀ, ਗੁਣਾ ਅਚਤ ਸਦਾ ਪੂਰਨ, ਨੈ ਦੁਖ ਵਿਆਪੈ ਕਲੀ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਬਚਨ ਕਾਰਜ ਸਰਵ ਪੂਰਨ, ਈਤ ਊਤ ਨਾ ਹਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਨਕ ਸਰਬੱਤ ਪੂਰਨ, ਬਿਖੈ ਅਗਨ ਨਾ ਜਲੀ, ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੋ ਦਾਸ ਅਪਨੋ, ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਰਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਸਰਨ ਅਨਾਥ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਚੱਲੀ। ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨ ਰੁਚੈ, ਕੋਟ ਸਾਂਤ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ, ਜਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਝੈ ਰਹਾਓ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਤਤ ਉਧਰੈ ਮੁਚੈ, ਰੇਣ ਜਨਕੀ ਲੱਗੀ ਮਸਤਕ, ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਸੁਚੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨ ਪੀਤਰ, ਕੜਕਟੈ ਸਵਾਮੀ ਸੁਜੈ, ਸਰਨ ਦੇਵਿਆ ਪਾਰ ਨਾਨਕ, ਬਹੁਰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੁਜੈ। ਕੇਦਾਰਾ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਰਹਾਓ, ਪੂਰ ਰਿਆ ਸਰਬੱਤਰ, ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਹਰ ਕੀਆ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਜਾਤਾ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਘਟ ਘਟ ਡਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਜੋ ਸਰਨੀ ਆਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੈ ਕਹਲਿਆ, ਹਰ ਗੁਣਿਤ ਗਾਏ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਮਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ,
हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही मीन बिशोहा नास है जल बिन मर पाही। हर बिन क्यों रही है दूख किन सही है चात्रक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज करण प्रगासिया। हर दर्स मन लागा दिन सुभागा अंधन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही। सास बिना ज्योंदे हुरी कत सोभा पावै दर्स बिहुना साध जानो खिण टिकण न आवै। हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हरसक बैरागी नाम लिवलागी कतो ना जाए नखेदया। हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक नाम आवै। हो कृपाल नानके स्वामी हर चरण संग समावै खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख विचारे नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वछल सुन अंचलो गहया घट घट पूर समानिया सुख सागरो पाया सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे। कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे राग के दारा बाणी कबीर जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद। उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना। तेरा जानू एक याद कोई काम क्रोध लोमो बिबरजत हर पद चीने सोई रहाओ। राज गुण तम गुण सत गुण कही है एह तेरी सम माया चौथे पद कहो जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। तीर्थ बर्त नेम सो संयम सदा रह निकामा तृष्णा अरमाया परम चूका चितवत आत्म रामा। जेह मंदिर दीपक प्रगासिया अंधकार तह नासा निरपव पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी संतो बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी साची बस्त के पार चलाए पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी आपै दहद से आप चलावै निचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी कहत कबीर सुनो रे संत हो निभि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझै हर रस पावै पाई जेते कट अमृत सब ही मैं पावै सह पियाई। नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै तमन खीवा पाई। अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी उबट चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी। काम

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पैरव महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मन

ममता काल सब रोग व्यापे तिन जम की है सरकारा। गुरमुख प्राणी जम नेण ना आवै जिन हर राख्या और तारा। जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता से जग मैं काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छा सोई फल पावै गुरबाणी सुख पाए। पहरो महला तीजा दुख विच जमै दुख मरै दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै बिष्टा माए समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेव ना कीनी हर का नाम ना पाया रहाओ। गुर का शब्द सब रोग गवाए जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिलै वड़ियाई जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटै तां फल पाए सच करनी सुखसार। से जन निर्मल जो हर लागे हर नामे तरह प्यार। तिन किरण मिलै ता मस्तक लाई जिन सतगुर पूरा त्याया। नानक तिन किरण पूरे भाग पाईऐ जिनी राम नाम चित लाया। पैरो महला तीजा शब्द विचारे सो जन साचा जिन कै हृदय साचा सोई। साची भगत करै दिन राती तां तन दुख न होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत न पाईऐ। पूरे भाग मिलै प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवावै लाभ मांगै लाहा लाभ किदू होई। जमकाल सदा है सिरी उपर दूजे पाए पत खोई। बहले पेख पवै दिन राती हों मैं रोग न जाई। पढ़ पढ़ लूजै बाद वखाणै मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेवै परम गत पावै नाम मिलै वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचै पथ पाई। पैरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरै दूजे पाए खुवाए। उधर नैसान न भरियै कबहू तृष्णागन पचाए। सदा आनंद राम रस राते हृदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पीतृ पताते रहाओ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाए। माया मोह किया जिन आपे आपे दूजे लाए। तिसनो केहो कहियै जे दूजा होवै सब तुद्दै महे समाए। गुरमुख ज्ञान तत् विचारा ज्योति ज्योत मिलाए। सो प्रभ साचा सद ही साचा साचा सब आकारा। नानक सतगुर सोजी पाई सच नाम निस्तारा। पैरो महला तीजा कल मैं प्रेत जिनी राम ना पछाता। सतजुग परमहंस बिचारी द्वापर त्रेतै मानस वरतै विरले हों मैं मारी। कल मैं राम नाम वडियाई जुग जुग गुरमुख एको जाता। विणना मैं मुक्त ना पाई रहाओ। हृदय नाम लिखै जन साचा गुरमुख मन वसाई। आप तरै सगले कुल तारै जिनी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता अवगण शब्द जलाए। जिन मन वसिया से जन सोहे हृदय नाम वसाए। घर दर महल सतगुरु दिखाया रंग सो रलिया माणै। जो किश कहै सो भला कर मानै नानक नाम वखाणै। पैरो महला तीजा मनसा मनै समाए।

प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पुजावन हार रहाओ। सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है होरथ सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेव्या दाता से अंत गए पछताहे। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए। पैरव महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जम सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई। मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरे फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर शांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार। ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाले राम नाम वड़ियाई। पहरो महला तीजा हम मैं माया मोहे खवाया दुख हटे दुख आए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए। मन मुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर स्यों कदन लागे प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमाने कूड़ होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए। हर हर नाम हृदय सदवसिया पाया गुणी निधान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड़ियाई नानक नाम समाए। पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरा नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे सासना ते बालक गम ना करे रहाओ। माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे। प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार। खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हम बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे। पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया। रहाओ अंधन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वसिया मन सोई। मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करे दुष्ट दै चढ़ाया। प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा दैते काल नेड़ाया। अपनी पैज आपे राख भगता दे वड़ियाई नानक हर नाक्ष नखी बिदारिया अंधे दर की खबर ना पाई।
राग पहराओ महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर शब्दी हर पज सुरत समायण मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमती ले राम रसायण गुर साधु अमृत ज्ञान सरनायण सब किले विख पाप गए गावायण तू आपे करता सृष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दाद दसायण भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मेलो गुरपूरा सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याए मन हर सिमरी कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी हम मूर्ख कव हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी भैरव महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली हर अगमा गोचर गुर अगम दिखाली विचकाया नगर लद्दा हर पाली हम बारक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली भैरव महला चौथा सब कर तेरे तू सबना माहे तुझते बाहर कोई ना है हर सुखदाता मेरे मन जाप हाँ तुद सालाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाओ जै जै देखा तै हर प्रभ सोए सब तेरे वस दूजा अवर ना कोए जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोई न जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर पहरो महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूर्त जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक भाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधसूदन जपिए और तार देही नगर तस्कर पंच धातु गुरसब्दी हर का डे मार रहाओ जिनका हर सेती मन मान्या तिन कार्ज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूर तो ता किश की जय जे किश होवे हर बाहर जो किश करे सोई पल होसी हर त्याव अंदन नाम मुरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओ पूछना किसे करे बीचार नानक सो प्रभसदा त्याई है जिन मेलिया सतगुर कृपा तार पैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जप्यागत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिकसे खिन खिन तिनको हों बलिहारी हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दास संदास की जय पनिहारी रहाओ तिन मत यूतम तिन पत यूतम जिन हृदय वस्या बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया ते हर दर गए कर डे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तिन ना काटे सृजनहारी हरे आप बोलावे आपे बोले हरे आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिले सो तुद मिलसी जन नानक आए जंत विचारी पैरो महला चौथा सतसंगत साई हर तेरी जत हर जित हर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्रेव नित चरणे
जग जीवन हर त्याय तरने अनेक संख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सो कणे। तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगमो नाम हर तेरे विच भगता हर तरने नानक जन पाया मत गुरमत।

नाम बिना सब दुनिया शार, अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह, नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए, नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण, पहराओ महला पंजवा, साज पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाना सतकर सहो, जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवाओ, हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार, नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा, सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए, पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ, रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावै, निंदक कौ अगन में पावै, पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही, पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत, निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दोखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा, चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगले पावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता, अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर पाव सगल मैं देखे, जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करे तिन निंदै, निगुरे पशु समाना, जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा, अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा, होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया, मिटाया पे सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया, पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए, दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए, संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण, रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो, नट नाटक निरताए,

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, तेह जन के सब का सवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक पढ़ना साके कोए। पैरो महला पंजवा, तौकड़िया जे होवे बाहर, तौकड़िया जे विसरै नर हर, तौकड़िया जे दूजा पाए, क्या कड़िया जा रहा समाए। माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ, तौकड़िया जे दूजा करता, तौकड़िया जे अन्याय को मरता, तौकड़िया जे कह जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही। तौकड़िया जे किश होए तिंगाणे, तौकड़िया जे भूल रजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभ ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा, जो पावे त्यों करे निबेरा। दुतिया नास्त एक रया समाए, राखो पैज नानक सरनाए, पैरो महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठ कैसे गवनहारी, जील बिना कैसे बजर बाब, नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ। बिन जेहवा कहाँ को बगता, बिन श्रवना कहाँ को सुनता, बिन नेत्रा कहाँ को पेखै, नाम बिना नर कहीं ना लिखै, बिन विद्या कहाँ कोई पंडित, बिन अमरै कैसे राजमंडित, बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, नाम बिना ससद ही चूरे। बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व बेकार, कहो नानक दर का विचार। पैरो महला पंजवा, हो मैं रोग मानख कौ दीना, काम रोग मैंगल बस लीना, दृष्ट रोग पचमोए पतंगा, नाद रोग खप गए कोरंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ। जेहवा रोग मीन ग्रस आनो, बासन रोग पवर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा, त्रिबद रोग में बदे बिकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी परमे, रोग बंद रहन रति ना पावे, बिन सतगुर रोग कत ना जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, बहा पकड़ रोगों कढ़ लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। पैरो महला पंजवा, चीत आवै ता महा आनंद, चीत आवै ता सब दुख पंज, चीत आवै ता सरदा पूरी, चीत आवै ता कबे न चूरी, अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरै दियो रंग लाए रहाओ। चीत आवै ता सर्ब को राजा, चीत आवै ता पूरे काजा, चीत आवै ता रंग गुलाल, चीत आवै ता सदा निहाल, चीत आवै ता सद धनवंता, चीत आवै ता सद निपरंता, चीत आवै ता सब रंग माणे, चीत आवै ता चुकी काणे, चीत आवै ता सहज कर पाया, चीत आवै ता सुन समाया, चीत आवै सद कीर्तन करता, मन मान्या नानक भगवंता। पैरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चिरंजीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा बनासी, कुटुंब हमारा नी करवासी, हम सुख पाया ता सवै सुहेले, गुरपुरै पिता संग मेले रहाओ। मंदिर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंता पूछे, राज हमारा सदी निचल, माल हमारा खूटा बेचल, सोभा मेरी सब जुगे अंतर, बाज हमारी थान थनंतर,
कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्रल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पहरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला। पैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख बिदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, पैरो महला पंजवा। नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूड सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुने चार, अवर कर्म लोके पतियार। पैरो महला पंजवा, नमस्कार तां कौ लख बार, एहो मन दीजै तां कौ वार। सिमरन तां कै मिटै संताप, होए आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृढ़ दुख डेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरी माई बाप। सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जां कौ प्रगट भय गोपाल, तां कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम।
ਜਾਂ ਕਉ ਭੇਟਿਓ ਠਾਕੁਰ ਅਪਨਾ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਨ ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨਾ ਆਲ ਕੇ ਆਵੈ, ਬੇਸਵਾ ਭਜਤ ਕਿਸ਼ਨੈ ਸਰਮਾਵੈ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰੈ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬੱਜਰ ਸਿਰ ਪਰੈ। ਮਾਇਆ ਲਗ ਭੁੱਲੋ ਸੰਸਾਰ, ਵਾ ਭੁਲਾਇਆ ਭੁਲਾਵਣ ਹਾਰੈ। ਰਾਹ ਚ ਰਹਿਆ ਬਿਰਥਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰਹਾਉ, ਪੇਖਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਹਾਏ। ਗੜਬੜ ਕਰੈ ਕੌਡੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਅੰਧ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਧ ਮੰਤ ਆਵੈ। ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਇਆ। ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਤੜਫ ਮੂਆ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਨ ਮੀਨਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਰਾਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਆਪ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਜਪ ਜਾਪ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੀ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ। ਤਾਰ ਲਏ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਉ, ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ। ਸੇਜ ਅੰਦਰ ਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਗੈ ਮਿਲੈ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਓ, ਜੁਗੈ ਜੁਗੰਤਰ ਇਹੋ ਤਤ ਸਾਰ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਲੜ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੈ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਪ। ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਆਪੇ ਜਾਪ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਾਥ। ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਆਵੈ ਕਾਮੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਵਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਗਮਿਆ ਮੋਲਾ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰ। ਰਹਾਓ

नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ, नाम ना विसरै संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाक रहा दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तौ प्रसाद रंग रस माणे, घट घट अंतर तुम्हें समाणे। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, सा संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। पैरो महला पंजवा, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटै हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापन हार। जाका हुक्म ना मिटै कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन्म मरण फिर सोग न होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना म्याधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वडपागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारै फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्तु जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो प्रवान। पैरो महला पंजवा, संत की निंदा जोनी भवना। संत की निंदा रोगी करना, संत की निंदा दुख सहाम। डान दैत निंद कौ जाम, संत संग करै जो बाद। तिन निंदै नाही के साध रहाओ।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिर मैं बिनस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखै दे कर हाथ निर्मल शोभा निर्मल दीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पहरो महला पंजवां करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पह पंजन अबनासी राए दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सदगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गह लीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए पहरो महला पंजवां मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी जिस नाम प्यार तिसकै संग तरै संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिद माहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागै नाम सुन तो जम दूरों भागै नाम लै तो सब दुखै नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किस चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पुहै हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया अकेला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवै नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रि भवन सार जाकै सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए सागर तरिय नाम कै रंग गुण गावै।

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सिखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हो ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौन मेरा, संपा हेत कला तो तम तेरा रहाओ। आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हाथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना पार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीत दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कहे करे मुल्ला कहे करे शेख। कहे कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सही समाना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पयो अन कतै न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामै हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज मैं बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप आपै रावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चित ना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों भाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कहे कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। आबना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुद्ध सार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर्म मेरा कर कर मरै। निज पद ऊपर

सो सुरतान जो दोए सरतान है, बाहर जाता पीतर जान है, गगन मंडल में लश्कर करे, सो सुरतान छत्र सर तर है, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदा ए, कबीर का स्वामी रया सुमाए। महल्ला पंजवा, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए। ठाकर हमरा सद बोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ, अंतर देव न जाने अंध, भ्रम का मोहया पावे फंद, ना पाथर बोले ना किश दे, फोकट कर्म ने फल है सेव, जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे, जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई। कहत कबीर हाँ कहो पुकार, समय देख साथ गावार, दूजे पाए बहुत कर गाले, राम भक्त है सदा सुखाले, जल में मीन माया के बेदे, दीपक पतंग।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोह देहो दान, जप जीवै नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जपत कछ नहीं संताप, गोबिंद जपत समिट अंधेर, हर सिमरत कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोबिंद भगत सो धन देस। हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग। निगट पेख प्रभ करन हार, ई तूत प्रभ कार जसार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओ अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभ दास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, जप जीवै नानक राम नाम। सारुत सुहावी जित हर चित आवै, फिर सतगुर दी सह बिललांती, सागत फिर फिर आवै जावै रहाओ। से तनवंत जिन हर प्रभ रास, काम क्रोध गुर शब्द नास, पह बिन से निरपै पद पाया, गुर मिल नानक खसम ते आया। साध संगत प्रभ कियो निवास, हर जप जप होई पूर्ण आस, जल थल महियल रव रहया, गुरमिल नानक हर हर कहया। अहिट सिद्ध नवनिद एह, कर्म प्राप्त जिस नाम देह, प्रभ जप जप जीवै तेरे दास, गुरमिल नानक कमल प्रगास। बसंत महला पंजवां, कर पहला एक तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जपनिया, प्रभ मिले चिरी विछुनिया, तुम रवो गोबिंद रमण योग, जित रवै सुख सहज भोग रहाओ। कर कृपा नगर निहालिया, अपना दास आप संभालिया, से सुहावी रस बनी, आए मिले प्रभ सुख धनी। मेरा गुणे अवगुण ना बिचारिया, प्रभ नानक चरण पूजारिया। बसंत महला पंजवां, किल बिख बिनसे गाए गुना, आन दिन उपजी सही धुना, मन मौल्यो हर चरण संग, कर कृपा साधु जन भेटे, नित राताओ हर नाम रंग रहाओ। कर कृपा प्रगटे गोपाल, लड़ लाए उधारे दीन दयाल, एहो मन होवा साध तूर, नित देखे स्वामी हजूर। काम क्रोध तृष्णा गई, नानक प्रभ कृपा पई। बसंत महला पंजवां, रोग मिटाए प्रभु आप, बालक राखे अपने कर थाप, सांत सहज गृह सद बसंत, गुरपुरे की सरनी आए। कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाओ, सोग संताप कटे प्रभ आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाम।
ਸਫਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭਲੀ ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪਦੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕੀਨੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਭਇਆ ਦਿਆਲ ਗੁਰਪੂਰੈ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਿੰਦੀਆ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਮੇਰਾ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਬਾਹਾਂ ਪਕਰ ਭਵਜਲ ਨਿਸਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਕਾਟ ਮਹਿਲ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕੋ ਧਾਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇਖ ਫੂਲ ਫੂਲ ਫੂਲੇ ਅਹੰ ਤਿਆਗ ਤਿਆਗੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਗੇ ਤੁਮ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਸੁਭਾਗੇ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਸਗਨ ਬਾਸਕੂਲੇ ਇੱਕ ਰਹੇ ਸੂਖ ਕਠੂਲੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਪਰ ਫੂਲਤਾ ਰਹੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਹੈ ਲੇਖਾ ਮਨ ਰੁੱਤ ਨਾਮ ਰੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰੇ ਹਰ ਹਰੇ ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹਿੰਡੋਲ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਪਾਸਾ ਢਾਲੋ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਤਕਾਲ ਨਹਿ ਲਾਗੈ ਪੀਰ ਰਹਾਓ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੁਮ ਚੌਪੜ ਸਾਜੋ ਸਤ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਜੀਤੋ ਐਸੀ ਖੇਲ ਹਰ ਪਿਆਰੀ ਉਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਸੋਏ ਹਰ ਆਰਾਧੇ ਬਿਖੜੇ ਦਾਓ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਆਪੇ ਖੇਲੈ ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਹਰ ਆਪੇ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਨਰ ਖੇਲੈ ਸੋ ਜਿਣ ਬਾਜੀ ਘਰ ਆਇਆ ਬਸੰਤ

अरहाओ जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे अर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोहे परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सकल बिनासी मनते नेज सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहा बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यो परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तैं साचा मानिया के विचार तन दारा संपत ग्रह कै संग न चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कश बिगड़ो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सह शरम साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम बिसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोलै चीता नीत जग स्यों टूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुद्ध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रताओ चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किशकीनस प्रभर जाए। पै माने निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम पणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर सबदी बिखत्यास निवास। गुर सबदी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा तार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अतलुब्ध लुबानो बिखुमाए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द विचारे।

नाम मेरो और पढ़ने से नहीं काम रहाओ। संडैमर कह कहो जाए प्रहलाद बुलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहां सतावो बार बार प्रभ जल थल गिर किए पहार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार मोको काल जार पावे मार डार। काड खड़ग को प्यो रसाए तुझ रख नहारो मोहे बताए, प्रभ थमते निकसे कै विस्तार हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव भगत हेत नरसिंह पेव, कह कबीर को लखे ना पार प्रहलाद उधारे अनक बार। इस तन मन मदे मदन चोर जिन ज्ञान रतन हिरलीन मोर, मैं अनाथ प्रभ कहो काहे को न बिगूतो मैं को आहे। मादा दारण दुख सयो ना जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए। रहाओ सनक सनंदन सिम सुकाद नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार सब अपने अवसर चले सार। तू अथाह हो मुहे था नाहे प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे। मोरो जन्म मरण दुखयाथ तीर सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बनजारे पाच बर्द पचीसक संग काच। नहो बहिया दस गोने आहे कसन बहत्तर लागी ताहे, मोहे ऐसे बणज स्यो नहीं नकाज जेह कटे मूल नित बड़े ब्याज। रहाओ सात सूत मिल बन जकीन करम भावनी संग लीन, तीन जगाती करतरार चलो बनजारा हाथ चार। पूंजी हिरानी बनज टूट दह दिस टांडो गयो फूट, कहे कबीर मन सरसी काज सहज समानो ता परम पाज। बसंत हिंडोल कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद,

छाया पागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसा भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतरस नाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दिनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पही उमंग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरै बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा। बाट पार कर मूस बिरानो, पेट भरे अपराधी, जेह पर लोग जाए अपकीर्त, सोई अविद्या साधी। हिंसा तो मनते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद साध संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली। शाड मानो हर बिमुखन को संग, सारंग महला पंजवां, सूरदास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्बस सब अर्पयो, आनंद सहज धुन चोक रहाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए है सगले थोक, आन बस्त स्यों काज ना कछु है, सुंदर बंदन्या लोक। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, जो कुष्टी तन जोक, सूरदास मन प्रभ हथ लीनो, दीनो यो परलोक। सारंग कबीर जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बंता, हित लागो सब फन का रहाओ, आगे कहो किस तुल्हा बंद हो, क्या परवासा तन का, कहां बिसासा इस भांडे का, इतन कला गै ठन का। सागल धर्म पुन फल पावहो, तूर बांछो सब जन का, कह कबीर सुनो रे संतो, एहो मन उडन पंखे रू बन का। राग मलार चौप दे महला पहला, कर पहला एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरना, खसम विसार खुवारी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम ते आवो, अपनी पासेती कर जावो रहाओ, तुदनो सेव है तुझ क्या देव है, मांगे ले वह रह नहीं। तू दाता जिया सबना का, जिया अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावै से मृत पावै, से ही सुचे हो ही, अहनिस नाम जपो रे प्राणी, मैले हच्छे हो ही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नाम है रुत के ही। मलार महला पहला, करो बिनो गुरे अपने प्रीतम, हर वर आण मिलावै, सुन कन कोर शीतल मन मोरा, लाल रती गुण गावै। बरस घना मेरा मन पीना, अमृत बूंद सुहानी ही आरै, गुरमोही मन हर सलीना रहाओ। सहज सुखी वर कामन प्यारी, जिस गुर बचनी मन मानिया, हर वर नार भई सुहागण, मंतन प्रेम सुखानिया। अवगण त्याग भई बैरागण, आस्तर वर सोहाग हरी, सोग विजोग तिस कदे ना व्यापै, हर प्रभु अपनी कृपा करी। आवन जान नहीं मन निर्मल, आवन जान नहीं मन निचल, पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम नहीं तृप्ते, हों मैं करत गवाया, पर तन पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया, शब्द चीन पै कपट ना छूटे, मनमुख माया माया। अजगर पार लदे अत भारी, मर जन्मै जन्म गवाया, मन पावै शब्द सुहाया। भ्रम भ्रम जोन पेख बहु कीने, गुर राखे सच पाया रहाओ। तीर्थ तेज निवार ना नाते, हर का नाम ना पाया, रतन पदार्थ पर हर त्याग गया, जत को तत ही आया। बिष्टा कीट पय उतही ते, उतही महे समाया, अधक स्वाद रोग अधकाई, बिन गुर सहज नाम पाया। सेवा सुरत रहस गुण गावा, गुरमुख ज्ञान बिचारा, खोजी उपजय बादी बिनसै, हम बल बल गुर करतारा। हम नीच होते हीन मत झूठे, तू शब्द सवारनहारा, आत्म चीन तहा तू तारण, सच तारे तारनहारा। बैस सुथान कहां गुण तेरे, क्या क्या कथो अपारा, अलख न लखिए अगमा जोनी, तू नाथा नाथनहारा। किस पै देख कहो तू कैसा, सब जाचक तू दा तारा, भगतहीन नानक दर देखो, एक नाम मिले उर तारा। मलार महला पहला, जिन तन पिरका साधना जानिया, सा बिलख बदन कुमलानी, पई निरासी कर्म की फासी।
ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੀ ਬਰਸ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭਿਆਨ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹਾਉ ਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਸੁਹਾਵੀ ਮੁਕਤ ਭਏ ਗੁਰਦਰਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜੋ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੀ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜਗ ਤੁਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਹਰ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸੱਚ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਪਤ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो पोग हर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी हो आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाए ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लाग आए। मलार महला पंजवा खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सोलैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन कौ पूजै आत्म काती हरते। हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार प्रमै बोजोनी टेक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ बिचर चितवत, मूड मुग्ध खल खरते। कागर नाव लंघै कत सागर बिरथा कथत हम तरते। शिव बिरंच असुर सुर जेते काल अग्न मैं जरते, नानक सरन चर

आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत बहुबिद रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवां गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हरे दे अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसमै बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण दुआरे। मलार महला पंजवां बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवां गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआं कै संग। हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म पहे दयाल बिनस गए बिखै जंजाल। साध जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत। मलार महला पंजवां कान गरजत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवां हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे बिन

वे प्रवाहो शब्द संतोखिया गहर गंभीरा था हो हाथ न लबई मोहे मोहे चोटा खा हो विणगुर कोई न छुटसी पत से ती कर जाहो नाम खानिया हुक्मी सागरा दिंदा जानिया।

गाइए गुण गोपाल कृपा निध दुख बिदारन सुखदा ते सतगुर जा को पेड़त होए सगल सिद्ध रहाओ। सिमरत नाम मनै साधार कोट परादी खिन मै तार जा को चीत आवै गुरे अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना। जा को सतगुर अपना राख सो जन हर रस रसना चख कहो नानक गुर की नी मया हलत पलत मुख उजल पया। कानड़ा महला पंजवा आराधो तुझे स्वामी अपने ऊठत बैठत सोबत जागत सास सास सास हर जपने रहाओ। ता कै हिरदय बस्यो नाम जा को स्वामी कीनो दान ता कै हिरदय आई सांत ठाकर पेटे गुर पचनात। सर्व कला सोई परवीन नाम मंत्र जा को गुरदीन कहो नानक ता कै बल जाओ कल युग मैं पाया जिन नाओ। कानड़ा महला पंजवा कीर्त प्रभ की गाओ मेरी रसना अनक बार कर बंदन संतन ऊहा चरण गोबिंद जी के बसना रहाओ। अनक भांत कर द्वार ना पावो होए कृपालता हर हर त्यावो। कोट कर्म कर देह ना सोदा सा संगत मैं मन प्रबोधा तृष्णा बुझी बहुरंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया। पार ब्रह्म जा पय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल। कानड़ा महला पंजवा ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ। पूजा चरना ठाकर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जा को सतगुर मया करे ही। अज्ञान परम बिनसै दुख डेरा जा कै हृदय बसै गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहो नानक तन पूरा पाया। कानड़ा महला पंजवा भगत भगत नूं बन आई तन मन गलत पए ठाकर स्यों आपन लिए मिलाई रहाओ। गावन हारी गावे गीत ते उदरे बसे जे चीत पेखे बिंजन परोसन हारै जे भोजन कीनो ते तृपतारै अनक स्वांग काचे पेख तारी जैसो सा तैसो दृष्टारी कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार। कानड़ा महला पंजवा तेरो जन हर जा सुन तो माहयो रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा जातकत पेखो आहयो सबते परे परे ते ऊंचा गहर गंभीरा थाहयो। ओत पोत मिलियो भगतन कहो जन स्यो परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहे समा समाहयो। कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उधारण आयो रहाओ दर्शन पेड़त होत पुनीता हर हर मंत्र दृढ़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औख दिखायो। अस्थित पय बसे सुखथाना बहुर न कथू तायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिप्त ना मायो। कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हम को बने आई। जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह सुमत साधु ते पाई। सब मैं रव रहया प्रभ एकै पेख पेख नानक बिकसाई। कानड़ा महला पंजवा ठाकर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओढ़ तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस परोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय तरना। तुमरो बल तुम संग सोहेले जो जो कहो सोई सोई करना तुमरी दया मया सुख पावो हो कृपाल ता पौजल तरना। अपैदान नाम हर पायो सिर डार्यो नानक संत चरना। कानड़ा महला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेकी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दृढ़ाया रहाओ। नह त्रिपतानो राजोबंतान बहुर बहुर फिरताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है सांत पाई गुन गाया बिन बुझे पशु की न्याई ब्रह्मो ब्याप्यो माया।
साध संग जम जेवरी काटी नानक साहिब समाया कानड़ा महला पंजवां हर के चरण हृदय गाए शीतला सुख सात मूर्त सिमर सिमर नित्य आए रहाओ सगल आस होत पूर्ण कोट जन्म दुख जाए पुन दान अनेक किरिया साधु संग समाए ताप संताप मिटे नानक बहुड़ काल ना खाए कानड़ा महला पंजवां करती जा एको अंकार सतगुर प्रसाद कथिए संत संग प्रभ ज्ञान पूर्ण परम ज्योत परमेश्वर सिमरत पाई है मान रहाओ आवत जात रहे श्रमनासे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावै नानक पूर्ण होवै आस कानड़ा महला पंजवां साध संगत निधार को नाम संग सहाई जी कै काम रहाओ संत रेण नित मज्जन करै जन्म जन्म के किल बिखरै संत जना की उच्ची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा महला पंजवां साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रहाओ ईतूत कहां लोभावै एक सिओ मन लाए महापवित्र संत आसन मिल संग गोबिंद आए सगल त्याग सरने आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवां पेख पेख बिकसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रहाओ आनंदा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही पात सिमर एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासै रिद पयंत सांत अमृता रस पियो रसना नानक हर रंग रात कानड़ा महला पंजवां साजना संत आओ मेरा रहाओ आनंदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाहे परेरा संत चरण तरो माथे चांदना ग्रे होए अंधेरा संत प्रसाद कमल बिगसै गोविंद भजो पेख नेरै प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओह बेरै।

रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै, मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै, धावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै।

मेरे दर्शन त्रिपत मन तीज माया मोह सबल है भारी मोह कालख दाग लगी जय मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते ज्यो मुर्गाई पंख ना भीजै चंदन वास भयंगम वेड़ी के मिलिए चंदन लीजै काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा बिक्षेद शेद रस पीजै आन आन समदा बहुकीनी पल बैसंतर पस्म करी जय महायुगर पाप साक्त नरकी ने मेरे साधु लुकी दी जय साधु साधु साध जानी के जनंतर नाम तरी जय परस निपरस पय साधु जन जन हर भगवान दखी जय साक्त सूत बहु गुरु जी भरिया क्यों कर तंत नी जय तंत सूत किशनिक सह नाही साक्त संग ना की जय सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवि जय अंतर रतन जिवे हर माणक गुर कृपा ते लीजै मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी हम क्यों कर मिले मिली जय नानक मेल मिलाए गुरपूरा जन को पूर्ण दी जय कल्याण महला चौथा रामा राम रामो राम रवि जय साधु साधु साध जानी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय कृपा कृपा कर साध मिलावो जग थमन को थम दी जय बसदा तला तला सब ऊपर मिल साधु चरण रुली जय अति उत्तम अति उत्तम होवो सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सख्त भरी जय मैन दंत निकसै गुरबचनी सार चब चब हर रस पी जय राम नाम अन गुरो बहु किया गुर साधु पुरख मिली जय गुण राम नाम बिसीरन की है हर सगल भवन जस दी जय साधु साधु साध मन प्रीतम बिन देखे रह ना सकी जय ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंध ना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेसर करमी मिलै वडाई। दिन दिन आवै तिल तिल शीजै माया मोह कटाई बिन गुर बूढ़ो ठौर ना पावै जब लग दूजी राई। अहनस जिया देख संभाले सुख दुख प्रभ कमाई कर्महीन सच भीखिया मांगै नानक मिलै वडाई। प्रभाती महला पहला मस्ट करो मूर्ख जग कहिया अदक बको तेरी लिव रहिया। भूल चूक तेरा दरबार नाम बिना कैसे आचार ऐसे झूठ मुठे संसारा निंदक निंदा मुझे प्यारा रहाओ। जिस निंदै सोई बिद जाना गुर कै सब दे दर निशाना कारण नाम अंतरगत जाना जिसनो नजर करे सोई बिद जाना। मैं लो उजल सच सोए ऊतम आखना उच्चा होए मन मुख खूल महा बिख खाए गुरमुख होए सोरा चैन आए अंधो बोलो मुग्ध गवार हीणो नीच बुरो बुरो यार। नी तन कहो तन नाम प्यार एहो तन सार होर बिखिया शार उस्तत निंदा शब्द विचार जो देवै तिसको जयकार तू बख्शै जात पत होए नानक कह कहावै सोए। प्रभाती महला पहला खाया मैल वधाया पैदा कर की हान बक बकवा चलाया बिन नावै बिख जान। बाबा ऐसा बिखम जाल मनवासिया बिबल चाग सहज परगासिया रहाओ। बिख खाना बिख बोलना बेकी कार कमाए जमदर बादे मारी ऐ छूट सच ऐ नाए। जिव आया तिव जाए सी किया लिख लै जाए मन मुख मूल गवाया दरगह मिलै सजाए। जग खोटो सच निर्मलाओ गुर शब्दी विचार ते नर विरले जानिए जिन अंतर ज्ञान मुरार। अजर जरै निजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल कौ मीन सै थै पावै राखो प्रीत। प्रभाती महला पहला गीत नाद हरख चतराई रह सरंग फुरमाए सकाई पैनन खाना चीत ना पाई साच सहज सुख नाम वसाई। क्या जाना क्या करै करावै नाम बिना तन किशना सुखावै रहाओ। जोग बिनोद स्वाद आनंदा मत सत पाए भगत गोबिंदा कीर्त कर्म कार निज संदा अंतर रवतो राज रविंदा। प्रयो प्रयो प्रीत प्रेम और तारी दीना नाथ पियो बनवारी अनदिन नाम दान प्रतकारी त्रिपत तरंग तत्त विचारी अकथो।

मार घर पाई मन से ही कर्म कमाए रहाओ। गुरमुख सहज तुन उपजै दुख हमें विचों जाए, हर नामा हर मन वसै सहजे हर गुण गाए। गुरमति मोसोने हर राख्या उतार, एथे उथे सुखना जप हर हर उतरे पार। हमें विच जागरण ना हो वही, हर भगत ना पवई थाए। मन मुख दर टोई ना लह, पाए दूजे कर्म कमाए। त्रे खाना त्रिक पहनना जिन्ना दूजे पाए प्यार। बिष्टा के कीड़े बिष्टा राते, मर जमै हुए खुआर। जिन कहो सतगुर पेटिया तिन्ना विटो बल जाओ। तिन की संगत मिल रहा सच्चे सच समाओ। पूरे भाग गुर पाई है उपाय कित ना पाया जाए। सतगुर ते सहज उपजै हमें शब्द जलाए। हर सरनाई भज मन मेरे सब कुछ करण जोग। नानक नाम ना विसरै जो किश करै सो होग। विवास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मात पिता भाई सुत बनता, चुगे चोग आनंद स्यों जुगता। उर्ज परे मन मीठ मोहारा, गुण गाहक मेरे प्राण आधारा। एक हमारा यंत्र जामी, तर एका मैं टिक एक सकी। सिर साहा वट पुरख स्वामी रहाओ। शल लागन स्यों मेरी टूटन होई, गुर कया ए झूठी तोही। मुख मीठी खाई कौराए, अमृत नाम मन

हम गुर राख लिए कृपाले, काम क्रोध से ठाठ ना बनया, गुर उपदेश मोहे कानी सुनया। जै देखो तै महा चंडाल, राख लिए अपने गुर गोपाल। दस नारी मैं करी दुहागन, गुर कया ए रसै बिखागन। इन संबंधी रसातल जाए, हम गुर राखे हर लिव लाए। अहम मेव स्यो मसलत छोडी, गुर कया एह मूर्ख होडी। एह नींगर कर कही ना पाए, हम गुर राख लिए लिव लाए। इन लोगन स्यो हम पहे बैराई, एक ग्रह मैं दोए ना खटाई। आए प्रभ पहे अंचर लाग, करो तपावस प्रभ सरबाग। प्रभ हस बोले किए न्याय, सगल दूत मेरी सेवा लाए। तू ठाकर एहो ग्रहो सब तेरा, कहो नान गुर किया नबेरा। प्रभाती महला पंजवां।

काल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग जय जयवंती महला नवा राम सिमरो राम सिमरो एह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है कहो कहा बार बार समझत न क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ सगल परम डार देहे गोविंद को नाम लेहे अंत बार संग तेरा यह एक जात है बिखिया बिख ज्यो बिसार प्रभ को जस ही ये तार नानक जन कह पुकार अवसर बिहात है जय जावंती महला नावा रे मन कौन गत होए है तेरी एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनियो कान बिखियन सिंह अत लुभान मत नान फेरी रहाओ मानस को जन्म लीन सिमरन न निमख कीन दारा सुख पयो दीन पगहो परी बेरी नानक जन कह पुकार सुपने ज्यो जग पसार सिमरत नहे क्यों मुरार माया जा की चेरी जय जावंती महला नावा बीत जह है जन्म अकाज रे निस दिन सुन कै पुराण समझत न रे अजान काल तौ पहुंचो आन कहां जह पाज रे रहाओ अस्थिर जो मान्यो

अमृत नाम नारायण नानक पीवतंग संतना तृपते। सहनशील संतंग समित्रस दुर्जन नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान पंगन सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुखन। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग नानक से प्राणी सुख बसन। सैना साध समूह सूरज तंग सन्नाहं तन्यमृता आवदे गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण। आरूढ़ ते अश्वरथ नागे बुजंते प्रमार्गे विचरते निर्भयं सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन। जितते विश्व संसार नानक वस्यं क्रोध पै तस्कर। मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत ततः कुटाम्ब मोह मिथ्या स्मरंत नानक राम राम नाम। नच विद्या निदान निगमं नच गुणग नाम कीर्तन। नच राग रतन कंठं नह चंचल चतर चतर। पाग उद्यम लभद्यंग माया नानक साह संग खल पंडित। कंठ रमणी राम राम माला हस्त ऊच प्रेम तारणी जी पणिजो उत्तम सलोक उदरनंग नैन नंदनी। गुरमंत्र ही नस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन। कुकरै सुकरै गर्भदय काकै सर्पनै तुल खलै चरणार बिंद भजनं हृदयंग नाम तारण। कीर्तनंग साध संगे नानक नह दृष्टांत जमदूतन। नच दुर्लभं धनं रूपं नच दुर्लभं स्वर्ग राजन। नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नच दुर्लभं स्वच्छ अंबर। नच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नच दुर्लभं बंता बिलास। नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं नच दुर्लभं चतर चंचल। दुर्लभं एक भगवान नामे नानक लभद्यं सा संकृपा प्रभं। जत कतै ततै दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोकै सर्वत्र रमणं गोविंद नानक लेप शेप ना लिप्या ते। बिखिया पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन। दुखं पयंत सुखियं पै पी पंत निर्भय। थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुरै। सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावन मम पावन। सर्व कर्तव ममंग कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्या ते। नह शीतलं चंद्र देव नह शीतलं बामन चंदन। नह शीतलं शीतुरुतेण नानक शीतलं सास्वजन। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण। दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित। उपदेशं समित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी। पर निंदा न स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेण कै। खट लखन पूर्णं पुरख है नानक नाम साध स्वजन। अजा पोगंत कंद मूलं बसंते समीप केहर। तत्रगते संसार नानक सोग हरखं व्यापते। छलं शिद्रं कोट बेगनं अपराधं किल बखमलं। परम मोहं मान अपमानं मदं माया व्यापतं। मृत्यो जन्म प्रमंत नरक अनक उपावं न सिद्ध्यते। निर्मलं साध संग है जपंत नानक गोपाल नामं। रमंत गुण गोविंद नित प्रत।
तरन सरन स्वामी रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आले है, गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण है, दुर्वचन भेद परमंग साकत प्रसन्नंत सुरजन है, अस्थतंग सोगहरखंग पह खीणंत निर्पव तय अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखण प्रमया, साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग, हे अजित सूर संग्रामंग अत बल ना बो मर्दन है, गण गंधर्व देव मानुख्यंग पशपंखी बेमोहन है, हर करण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर है, हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी परमावण है, चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तपसील विदारण है, अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है, तव पै बिमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है, हे काल मूल क्रोधं कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवं वस्यं क्रोत निरत्यं क्रोत जथा मरकटै, अनक शासन ताड़ंत जमदूतै तव संगे अदमं नरै, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत, हे लोबा लंपट संग सिर मोरै अनक लहरी कलोलते, तावंत जिया बहु प्रकारं अनक भांत बहु डोलते, नच मित्रंग नच हिटंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया, अकरण क्रोत अखाद खाद्यंग असाजिंग साज समझिया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर है, हे जन्म मरण मूलंग हे जन्म मरण मूलंग अहंकारं पापात्मा मित्रंग तजंत सत्रंग दृढ़ंत, अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण है, परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण है, वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे, हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरो, हे संसार ताप हरण है करना मैं सब दुख हरो, हे शरण योग दयाल दीना नाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव है, चरण कमल सरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन है, साध संगेन तरणंग नानक महासागर पै दुत्तर है, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मंग हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है पै दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है, जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग, जैन कला स सूर नक्षत्र ज्योत्यंग सासंग शरीर तारणंग, जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैछ जंत जठर रोगण, तेन कला अस्थम्बंग सरोवरंग नानक नैश जंत तरंग तोयण, गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणंग सर्वत्र जीवन, लब्ध्यंग संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन, मस्कंग पगनंत सैलंग कर्दमंग तरंत पपील कै, सागरंग लंघंत पिंगंग तम प्रगास अंध कै, साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीणंग जथा विपरा अमरहीणंग जथा राजन, आवधहीणंग जथा सूरा नानक धर्महीण तथा वैष्णव है, ना संखंग ना चक्रंग ना गदा ना सियामंग आश्चर्य रूपंग अरहंत जन्मंग, नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद है, बसंत साध हृदयंग अचत बुझंत नानक वट भागी है, उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खरै, बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर है, हीत मोह पै परम परमणंग अहु फांस दीखण कठन है, पावक तो असाध कोरंग अगम तीर नय लंगन है,
ਪਜ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੋਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਉਧਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਸਗਲਿਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਸਿਆਮਲੰਗ ਮਦਰ ਮਾਨੁਖ ਅੰਗ ਹਿਰਦਯੰਗ ਭੂਮ ਵੈਰਣ ਹੈ ਨਿਵੰਤ ਹੋਵੰਤ ਮਿਥਿਆ ਚੇਤਨੰਗ ਸਵੰਤ ਸਵਜਨ ਹੈ ਅਚੇਤ ਮੂੜਾ ਨਾ ਜਾਣੰਤ ਘਟੰਤ ਸਾਸਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੇਸ਼ ਜੰਤ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਇਆ ਕਾਲ ਕੰਨਿਆ ਗ੍ਰਾਸਤੇ ਹਰਚੰਤ ਪੁਰਖ ਹੈ ਕੁਟੰਬ ਲੀਲਾ ਅਨਿਤ ਆਸਾ ਵਿਖਿਆ ਬਿਨੋਦ ਪਰਮੰਤ ਪ੍ਰਮੰਤ ਜਨਮ ਹਾਰਿਓ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਮਯ ਹੇ ਜਿਹਬੇ ਹੇ ਰਸਗੇ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਯੰ ਸਤ ਹਤੰਗ ਪਰਮ ਬਾਦੰਗ ਅਵਰਤ ਏਥੈ ਸੁਧ ਅਛਰਣ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਗਰਬੰਤ ਨਾਰੀ ਮਦੋਨ ਮਤੰ ਬਲਵੰਤ ਬਲਾਤ ਕਾਰਣ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹਿ ਭਜੰਤ ਤਰਨ ਸਮਾਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮਨ ਹੇ ਪਪੀਲਕਾ ਗ੍ਰਹਟੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਤੋਯੰਗ ਧਨੇ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਮੋ ਨਮੈ ਤ੍ਰਿਣੰਗਤਾ ਮੇਰੰਗ ਸਹਿਕੰਗਤਾ ਹਰਿਯੰਗ ਬੂਡੰਗਤਾ ਤਰਿਯੰਗ ਊਣੰਗਤਾ ਭਰਿਯੰਗ ਅੰਧਕਾਰ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰੰਗ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਦਯਾਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੰਗ ਉਦਰਣੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਜੇ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਰਤੰਗ ਸੰਸਾਰ ਗਹੰ ਤੇ ਨਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲੈ ਪਰ ਦਰਬ ਹਿਰਣੰ ਬਹੁ ਵਿਘਨ ਕਰਨੰ ਉਚਰਣੰ ਸਰਬ ਜੀ ਕੈ ਲਾਉ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤਿਪਤ ਮਨ ਮਾਏ ਕਰਮ ਕਰਤ ਸਾਸੁ ਕਰੈ ਮਤੇ ਸਮੇਵ ਚਰਣੰ ਉਦਰਣੰ ਪੈ ਦੁੱਤਰੈ ਅਨੇਕ ਪਾਤਕ ਹਰਣੰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਨਾ ਸੰਸਿਐ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗਾਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥਗਰ ਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣ ਪਰਮਾਣੋ ਪਰ ਜੰਤ ਆਕਾਸੈ ਦੀਪ ਲੋ ਸੇ ਖੰਡਣ ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਪਾਰੇਣ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਆ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਤ ਹੋਵੰਤੋ ਮਰਨੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਣ ਮਿਥਿਆ ਕੀਰਤ ਸਾਥ ਚਲੰਥੋ ਪੜੰਤ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਪਰਮੇਣ ਇਸ਼ਟ ਮਿਤਰੇਖ ਬਾਂਧਵੈ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੋਖਿਆ ਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਲਬਧਿਅੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਅਸਥਾਨੰ ਗੋਪਾਲ ਭਜਣੰ ਮੈ ਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬਾਂਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ ਗਾਥਾ ਗੁੰਫ ਗੋਪਾਲ ਕਥੰ ਮਥੰ ਮਾਨ ਮਰਦਨੈ ਹਤੰ ਪੰਚ ਸਤਰੇਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਣੇ ਪਰਹਾਰਣੈ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੁਖ ਪੰਥਾ ਲਹੰਥਾ ਬੜ ਕਰਮਣੈ ਅਰਹੰਤਾ ਜਨਮ ਮਰਣੇਨ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਪੱਤਰ ਪੁਰ ਜੇਣ ਝੜੀਅੰ ਨਹਿ ਜੜੀਅੰ ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਬਿਖਮਤਾ ਨਾਨਕ ਬਹੰਤ ਜੋਨ ਬਸਰੋ ਰਹਿਣੀ ਭਾਵਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਲਬੰਤੰ ਬੜ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਣ ਰਮਣੰ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੈ ਵਿਆਪਣੈ ਗਾਥਾ ਗੂੜਿਆ ਪਾਰੰ ਸਮਝਣੰ ਬਿਰਲਾ ਜਨੈ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਤਜਣੰ ਨਾਨਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣੰ ਸਾਧ ਸੰਗਮੈ ਸੁਮੰਤਰ ਸਾਧ ਬਚਨਾ ਕੋਟ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸਨੈ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਿਆਨੰ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਣੈ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਸੈਣੈ ਜੇਣ ਮੱਧ ਹਰ ਕੀਰਤਨੈ ਮੁਕਤੇ ਰਮਣ ਗੋਬਿੰਦੈ ਨਾਨਕ ਲਬਧਿਅੰਗ ਬਣ ਭਾਗਣੈ ਹਰ ਲਬਧੋ ਮਿੱਤਰ ਸੁਮਿੱਤੋ ਬਿਦਾਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚਿੱਤੋ ਜਾਂ ਕਾ ਅਸਥਲ ਤੋਲ ਅਮਿੱਤੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਖਾ ਜੀ ਸੰਗ ਕਿੱਤੋ ਅਬਜ ਸੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਤ ਪੁੱਤਰੈ ਸਿਮਰਤਾ ਬਿਰਦੈ ਗੁਰਮੰਤਰਣੈ
प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण मरणं बिसरणं गोविंद जीवणं हर नाम त्यावण लबणं साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण दसन बिहून पुयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं व्याध्योपण संतं नानक लब्ध कर्मण जाथ कथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुरदर्शन चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यं परा पूर्वण शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उरतारं कुल समूह सगले उदारं वडपागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहन लब्ध्यं साध संगेण नानक वडपागी पेटंत दर्शन सर्व दोख परं त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेन साध संगेण नानक मस्तक लिखण होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्म जानो नानक प्रीत कारण सुखैन बैन रत्नं रचनं कुसुंभरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुख ना सुपन फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया संत सभा मैं बैस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सब है के साजिया सो लै किए सिंगार के अंजन पाजिया जे कर आवे कंत ता सब किश पाई है हर हा कंत है बाज सिंगार सब बिरथा जाई है जिस घर वसिया कंत सावड़ पागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया आसा इती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटया आवा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बसना सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसे जिस सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तले तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईऐ हर हां जे मस्तक होवै भाग ता दर्श समाईऐ डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहिया बदो पुरख विधातै ता तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हां
ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹੇ ਨਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਸੁਚਿਤ ਸੋ ਸਾਜਨ ਚਾਹੀਐ, ਜੇ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕੋ ਵਾਹੀਐ। ਬਨ ਬਨ ਫਿਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ, ਹਰ ਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ। ਮਿਤ ਕਾ ਚੇਤਾ ਨੂੰ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਗਾਹਕ ਗੁਨੀਆ ਪਾਰ ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਐ। ਚਿਤੈ ਚਿਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੈ ਰੰਗ ਘਨਾ, ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵੈ ਸਚ ਤਨਾ। ਸੁਪਨੈ ਉਬੀ ਪਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਰਾਇਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ।

कबीर बैसनों की कूकर भली सागत की बुरी माए ओह नित सुने हर नाम जस ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हर ना दुबला एहो हरियारा।

राम स्नेही तो मिलै दोनों वर्ण गवाए। कबीर हरदीपी रतन हरै चून चहन ना रहाए। बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वर्ण कुल जाए। कबीर मुक्त दो

गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा, तब उतर पर्यो हों फर्क। कबीर पापी भक्त ना पावई हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हर जय बिगंत जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर, काया हांडी काठ की ना उचरे बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हास्य दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसी है, गुण को मरिए रोए, अवगुण यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट, गुर जो नाचे तय अपनो अध माज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुजंग मन बसे मंत ना माने कोए, राम बियोगी ना जिये जिये ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, तेह मिलते ऊ तुम पहे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिले ओ तेन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हौ ही भला दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौ बते अपनी दिन दस लिहो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिलह आए। कबीर सात समुंदे मस करो कलम करो बन राए, बसदा काव्य जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चूके सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक, अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेह चढ़ी सुनो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कबीर जां को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जां को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओह चूले ओह चीरी है साकत संग ना हेर। कबीर पार पराई सिर चरे, चलियो चाहे बाट, अपने पारे ना डरे आगे औकट काट। कबीर बन की दादी लकरी ठंडी करे पुकार, मत बस परो लोहार के जारे दूजी बार। कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पायो ठाओर, जिन हर का नाम ना चेतियो कहां पुलाने और। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाहो, साक्त संग ना कीजिए जाते हुए बिनाहो। कबीर जग में चेतियो जान कै, जग में रहो समाए, जिन हर का नाम ना चेतियो बंद है जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अवरे आस निरास, नरक परे ते मन नहीं जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन कहो बीचे अटके चीत। कबीर कारण बपरा क्या करे जो राम ना करे सहाय, जे जे डाली पग धरो सोई मुरमुर जाए।
कबीर अवर है को उपदेश ते मुख में पर है रेत रास बिरानी राखते खाया कर का खेत। कबीर साधु की संगत रहो जौ की पूसी खाओ होनहार सो होए है सागत संग ना जाओ। कबीर संगत साध की दिन दिन दूना हेत सागत कारी कामबरी तोय होए ना सेत। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए जो किश किया सो मन किया मुंडा मुंडिया जाए। कबीर राम ना छोड़ी।

कबीर माए मुंडोते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे तो मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पय निदान सब जा पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै अहोई राख नार, गधी होए कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जामु कहिए राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीसगी जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जेह जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो, सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैनाहा। कबीर नैन निहारो तुझ कहो, श्रवण सुनो तो नाओ, बैर उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो, सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चात्रक ज्यो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी ज्यो निस्बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतेओ जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक है सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਹੋ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੁਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਜ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਵਿਚੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ।

कबीरा हमरा को नहीं हम किसहु के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारखे आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की लेगो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुभ्र फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर थातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहन क्यों करो सब कर देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तुहे साध ब्रह्म की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल कै ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जौ ग्रहो करे ता धर्म कर, नाही ता कर बैराग, बैराग

काला मेंढा वेश गुन ही परया मैं फिरा लोक कह दरवेश। तत्ती तो इना पल्लवै जे जल टुबी दे फरीदा जोड़ो हगन रब दी चूरे दी चूरे। जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है। कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोलना पिवै उडन संधि डंज। हंस उडर कोदरै पया लोक विडारन जाए गहला लोक न जानदा हंस ना कोदरा खाए। चल चल गईया पंखिया जिनी वसाए तल फरीदा सर परिया पी चल सी थके कवले कल। फरीदा इट सराने पोए सवन कीड़ा लड़ियो मास केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी समन्वी टुटी नगर लज अजरा ईर फरेश्ता कैकर नाठी अज। फरीदा पन्नी कड़ी समन्वी टुटी नगर लज जो सज्जन पोए पार थे से क्यों आवै अज। फरीदा बेनिवाजा कुत्या एना पली रीत कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत। उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई नान वै सो सिर का प्यो तार। जो सिर साई नान वै सो सिर की जय काए कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदे थाए। फरीदा किथे तेंडे मापिया जिनी तू जने ओहे तै पासों ओए लद गए तू अजय ना पतीन ओहे। फरीदा मन मैदान कर टोए टबे लाए अगै मूल ना आवसी दोजक संधि पाए। महला पंजवां फरीदा खलक खलक मैं खलक वसै रब माए। मंदा किसनो आखीऐ जा तिस बिन कोई ना आए। फरीदा जे दे नाला कप्पिया जेगल कप्पै चुख पवनाइती मामले सहनाइती दुख। चबण चलण रतन से सुनियर बह गए।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अब

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पार, परे ही ते परे अपरे अपार पार, आपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार, ओपत परलो एक है निमख तो कार, आन नाही संसार उजियारो निर्मर, कोट प्राप्त जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए विस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्व गुण निधानं कीमत ना ज्ञान ध्यानं, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थानं, मन तन तेरो प्राणं एक सूत है जहानं, कौन उपमा देओ बड़े ते बड़ानं, जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तानं, जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी, जा कह होहे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जन परसयो, से जन मरण दो थे रहो, सत सत हर सत सत सत्ते सतपणिए, दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्त आगाए, जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सतसंग ते प्यार, हर गुरु नानक जन परसे हो दिन सब कुल कियो उधार, सच सबा

लागे बहु पांती बिचरे अनक शास्त्र बहु खटुआ पसम लगाए तीर्थ बहु प्रमते सूखम दे बंदे बहु जटुआ बिन हर भजन सगल सुख पावत बिन हर भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाटे कर थटुआ सवैये महल्ले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता ताह चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम त्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद क आत्म रस जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजयोग जिन माणेओ गावे जनकाद जुगत जोगेसर हर रस पूर्ण सर्ब कला गावे सनकाद साध सिधादक मुन जन गावे अशल शला गावे गुण तोमा टल मंडल वै भगत पाए रस जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजयोग जिन माणेओ गावे कपलाद आदि जोगेसर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परसरा मेसर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वात्म जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजयोग तै माणेओ गावे गुण बरनचार खट दर्शन ब्रह्मादिक समरंथ गुना गावे गुण शेष सहस जेबा रस आदि अंत लिव लाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राजयोग तै माणेओ राजयोग तै माणेओ छल्यो राजयोग तै माणेओ बस्यो निर्वैर निरंतर श्रिट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आदि जन का जुगै लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ भलो जग पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाणेओ हर नाम रसक नानक गुर राजयोग तै माणेओ सतयुग तै माणेओ छल्यो बल बावन पायो त्रेतै तै माणेओ राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपह भगतै जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल टल आदि पुरख फुरमायो गुण गावै रवदास भगत जय देव तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावै समलोचन भगत बेन गुण रवै सहज आत्म रंग माण है योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देओ परीक्षित गुण रवे गोतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो गुण गावे पयाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवे सदा योगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उचर जिन हुक्म सब सिरट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाण्यो जब कल सुजस नानक गुर सहजोग जिन माण्यो गुण गावे नवनाथ तन गुर साज समायो मां दाता गुण रवे जिन चक्र वै कहायो गुण गावे बलराओ सबत पाताल बसंतो पर थर गुण उचरै सदा गुर संग रहंतो दूर बा पुरो अंगरै गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर कटकट सहि समायो सवैये महल्ले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता कारण करतार करण समरथो सतगुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जिन हथो ता तरयो मस्तक हथ सहज आम्यो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहि अगाज
ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ, ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ, ਪੰਚਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ, ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੈ ਸਮਤ ਸਾਰ, ਰਥ ਉਨ ਮਾਨੋ ਲਿਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾਰ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ, ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ, ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਬਦ ਸਾਰ, ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ, ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਪਾਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ, ਜਾਗੀ ਲੇ ਗੁਰਬੀਚਾਰ, ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀ ਮਜਾਰ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਤੈਂ ਤਉ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ, ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ, ਸਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ, ਰਹਿ ਜਗਤਰ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਲਪਤਰ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ, ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਜਾਰ, ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਦਰਥ ਪਾਇਓ ਮਾਨ, ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ, ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सतयुग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर तरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तें लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कहो दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो हर नाम अखै निद चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियं, बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं, प्रतख देहे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण परणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जहां की श्री रामदास तारण तरणं, जेहे अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कार मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण पग्गा एह आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जां की श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम सेवी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महामग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन।

निरंजन जचना गुरप्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बडमेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जाने शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथरा रसना रसै श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया त्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार ना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड सुबर सदा सब दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल युग कब होक को उपावे आत्म प्रगास कहो वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जाको शिव मुन गहे नात जात कबलास कौ। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कौ सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास कौ। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बेगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे बिद मान गुर आप थप्यो थिर सचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ ताहे कहा परवाह कहूं की जा कै बसीस धरयो गुरहथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खो जंत फिरे अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रसयो ही ओ। गुर अमरदास करतार

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव तरलोचन नामा अवर कबीर पण तिनको अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करतना छोड़ियो पास ताते गौ हर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधे यार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पाओ मान तुमली अगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जे पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुरु रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। मोह मल बिवस की आओ काम गह केस पछाड़े आओ क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़े आओ। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्ने पव सागर बंदे आओ सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात

चाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नावा गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकार्थ कीन कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन बिख्यान स्यों काहे रचियो निमख ना होहे उदास कहो नानक भज हर मना परे नजम की फास तरना पो यों ही गयो लियो जरा तन जीत कहो नानक भज हर मना औद जात है बीत बिरद भयो।

तन तन संपै सुख दियो आर जेह नीके ताम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जाना।

कट कट में हरजू बसे संतन कहो पुकार, कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्त निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना तहकट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान, कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तह काम। जेह बागुन गोबिंद पजह करण सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम। जो प्राणी

और न लेत उधार। जो सपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुध बुदा उपजय बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख को चाहे सदा सरन राम की ले है, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही मूर्ख लोग या जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख में बहु संगी पै दुख में संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहो उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को की।

गर्व करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत, जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बेदहर पायो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन मैं तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यों कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत, कह नानक।

एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल, दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय, संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ, नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो, जा कै सम नहीं कोए। जेह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो, जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे,

एक ओंकार सदगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलाप आठो नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही। प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी। ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे। बंगालम मदमाद वगावे, ललत बिलावल गावही। अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के, गावह गायन पात्र। दुतिया माल कौशकिया लाप, संग रागनी पांचौ थाप। गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा, परबल चंड कौशक उबारा। खौ खटियाओ पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत। उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए। सरस बान औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कह

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और अम्मा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछ सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तार के दारा जबली तार नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहिया के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारां ते अंतर के खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिआं नाल चिराए गए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकार आखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होणा छे पौड़ियां आनंद साहब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदिआं विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवे, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे